0: रविंद्र जैन के गाए भजन के साथ भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें भूमि की उर्वरा शक्ति को कैसे कायम रखा जाए इस संदर्भ में। ऊंची नीची व ढालू भूमि को सीढ़ीदार खेत के रूप में बनाकर सफलतापूर्वक उसमें खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत बनाते समय भूमि की ढाल, मिट्टी की किस्म, वार्षिक वर्षा आदि पर ध्यान देना जरूरी है। सीढ़ीदार खेत बनाने से हम भूमि का सही उपयोग कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेत कम वर्षा एवं अधिक वर्षा के क्षेत्रों में अलग अलग विधि से बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा खेत 8% से अधिक के ढाल पर बनाए जाते हैं। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में खेतों का ढाल अंदर की ओर किया जाता है, जिससे कि बारिश का अधिक पानी सफलतापूर्वक खेतों से बाहर जा सके और मिट्टी का कटाव कम से कम हो। खेत में अंदर की ओर एक नाली बना दी जाती है, जिससे कि बहता पानी सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। कंटूर का तात्पर्य है समान ऊंचाई पर, अर्थात किसी पहाड़ या फिर किसी भूमि पर एक ऊंचाई के स्थानों को एक पंक्ति में मिला देना। ट्रेंचिंग का अर्थ है नाली बनाना। अतः एक ही ऊंचाई पर नाली बनाने को कंटूर ट्रेंचिंग कहते हैं। पहाड़ी जमीन पर जहां ना तो खेत बनाना संभव है और ना कोई फसल लेना, वहां पर हम कंटूर ट्रेंचिंग पद्धति से बागानी फसलें व घास आदि सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। जंगल साफ करने के बाद 8 से 10 मीटर की दूरी पर कंटूर पर खूंटी लगा दें। ये दूरी लगाए जाने वाले पौधे के अनुसार तय की जाती है। पंक्ति के नीचे एक जैसी पंक्ति मिल जाए और नाली पौधे से 2 से 15 मीटर ऊपर रहे। नाली बनाने से निकाली गई मिट्टी को नाली के नीचे की ओर एक मेड़ के रूप में रख देते हैं। पहाड़ी जमीन पर पानी को भूमि के अंदर जाने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि पहाड़ों में पानी ठहर नहीं पाता है। अतः नाली बनाने से पानी को भूमि में ले जाने में सहायता मिलती है। पेड़ पौधे लगाते समय भूमि की ऊपरी परत खुल जाती है। नाली बनाने से ऊपर की अच्छी उपजाऊ मिट्टी नाली में आ जाती है। बेकार भूमि में कंटूर ट्रेंचिंग विधि द्वारा पानी रोककर भूमि का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग का अर्थ है समान ऊंचाई के स्थानों पर मेड़ बनाना। ये एक ऐसा उपाय है जिससे ढालू भूमि पर मिट्टी का कटाव कम करके खेती किया जा सकता है। कंटूर बंडिंग 6% ढाल तक की भूमि पर की जाती है। ये प्रायः शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ इसे अधिक बारिश के क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है, जिसे हम ग्रेडेड बंड कहते हैं। दो मेड़ों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर, मेड़ की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तथा

0: पेड़ के नीचे की चौड़ाई 3 से 4.5 मीटर एवं ऊपर की चौड़ाई 1 मीटर तक रखना चाहिए। कंटूर बंडिंग से भूमि का संरक्षण होता है और साथ ही साथ ढालू भूमि में जल प्रबंध भी आसानी से किया जा सकता है। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी में दलहनी फसलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन फसलों का प्रयोग खाद, भोजन तथा चारे के रूप में होता है। दाल की खेती सिंचाई की असुविधा वाले स्थानों में भी आसानी से की जा सकती है। दलहनी फसलों की जड़ों में एक प्रकार की गांठें होती है जो कि वायुमंडल से 40 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खींच लेती है। इस फसल के बाद नाइट्रोजन वाली खाद का अधिक प्रयोग न करने पर भी खेत से अच्छी फसल मिलती है। हमारे इन द्वीपों में बारिश अधिक होने के कारण मिट्टी कटाव की समस्या भी ज्यादा है। दलहनी फसल मिट्टी कटाव को रोकती है या कम करती है। इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जा सकता है जो कि खेत की मिट्टी की भौतिक व रासायनिक गुणों में सुधार लाती है। किसान भाइयों, इस प्रकार भूमि का सही प्रयोग और सही फसल के चुनाव से हम भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने

हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Nagpur, Masur and Urad. However, whether it is a Kharif or a Ravi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
1: The Election Commission has organized special enrollment camps at colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. A large number of students visited the camps yesterday to seek information on the Special Intensive Revision or SIR and to obtain or submit electoral forms. The camps will continue today as well. The EC said that block level officers or BLOs present at these camps are guiding the students to fill their forms, collect the filled-in forms and also resolve queries related to SIR. Another round of camps will be organized on 7th and 8th of next month. The poll body requested all young electors to avail this opportunity for enrollment of their names in electoral rolls and participate in the democratic process. Special camps will also be held at all polling stations locations on 4th and 11th of next month for enrollment of all categories of electors. The commission said that new applicants attaining the age of 18 years on or before 1st October this year should apply in Form 6 for inclusion of their names in the electoral roll. EC noted that as of now, more than 4 lakh hearings have been conducted in Delhi. In Jammu and Kashmir, a top Lashkar-e-Taiba terrorist was killed in an encounter with security forces in Budgam district yesterday evening. The terrorist was identified as Fauzi Musa, a top Lashkar-e-Taiba commander. In a social media post, the Indian Army's Chinar Corps said the operation was carried out jointly by the Army Police and the Central Reserve Police Force CRPF in Korag near Yusmarg in Budgam. In men's cricket, India will face the West Indies at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati today in the second ODI of the three-game series. The match will begin at 2 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:11 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कालीघाट माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर बाद 3 बजे डिगलीपुर से माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज दोपहर 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 5:30 पर स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल रात्रि 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी शुक्रवार 2 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 12 बजे रंगत से

0: लॉन्ग आइलैंड और सरोजदीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:00 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 1:00 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल दोपहर 2:00 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे उन यादों की जो हमारे दिल के किसी कोने में आज भी सुरक्षित है। ऐसी यादें जिनकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारा दिल संभाले रखता है। तो आइए आंखें बंद करके करें याद अपने अतीत की किसी खूबसूरत पल को और देखें क्या याद आता है हमें।

दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू हमेशा हमारे साथ रहती है। बचपन की वो शरारतें, स्कूल के दोस्तों के साथ बिताए पल, माँ की आवाज, पापा की डांट, किसी खास दोस्त की मुस्कान और कभी कभी किसी अपने की वो छोटी सी बात या मुलाकात, जिसे हम आज भी याद करके मुस्कुरा देते हैं।

यादें भी बड़ी अजीब होती है, कभी चेहरे पे मुस्कान ले आती है तो कभी आंखों को नम कर जाती है, कभी हमारे बचपन में ले जाती है तो कभी किसी ऐसे इंसान के करीब पहुंचा देती है जो हमारे साथ नहीं है, बस उनकी याद आती है।

0: दोस्तों, कुछ यादें मीठी होती है तो कुछ हमें भावुक कर जाती है, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम चाह कर भी भूल नहीं पाते। इसलिए जिंदगी के हर पल को भरपूर जीकर खट्टी मीठी यादें संजोते रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, और दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। इसे प्रस्तुत कर रही थी गीता। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए रामचरितमानस गान की 377वीं कड़ी।

गरुड़ के आगमन से काकभुशुंडी समेत सभी पक्षी अति प्रसन्न हुए। काकभुशुंडी ने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और उनके वहां आने का उद्देश्य पूछा। गरुड़ का आधा मुंह तो वैसे ही भंग हो चुका था, फिर भी उन्होंने इस स्वीकारोक्ति के साथ काकभुशुंडी से रामचरित सुनाने की विनती की।

अभी आप रामचरितमानस गान की 377वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

श्रोताओं, वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देश गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:50 हुए हैं। अब सुनते हैं मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। जनसेवाओं को बताया जाता है कि द्वीपों के एक या दो भागों पर बिजली चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेगी। आज शाम तक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। आनंद लीजिए देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी का 7:15 पर, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में साहित्य दर्पण कार्यक्रम में कावित्री डॉक्टर एन लक्ष्मी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में इस विषय पर स्वरचित काव्य पाठ आप सुनेंगे और साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के तहत सुनिए कमलिनी मल्होत्रा और नूर जहां को 8:30 पर। 9:00 आनंद लीजिए चंद फिल्मी गीतों का। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 9:45 पर चंद फिल्में गीत आप सुनेंगे।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल का समय होगा दिन के 10 बजे। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1383वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रलोक। दोपहर 12 बजे होगा तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में अर्शी बेगम, यूसुफ आज़ाद कव्वाल और महेंद्र कपूर को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1:30 पर। दो बजकर 30 मिनट पर मौसम की जानकारी के साथ हमारी पहली सभा समाप्त होगी, लेकिन 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम और 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे प्राइमरी चैनल पर शाम 4 बजे।

बारी कार्यक्रम के साथ 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 21वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा 4:40 पर। बहारों की शाम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा 4:45 पर। शाम 5 बजे सुनिए तमिल कार्यक्रम। बांग्ला कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 पर। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में अदरक की जैविक खेती, इस विषय पर डॉक्टर वी दामोदर से की गई बातचीत आप सुनेंगे। क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएँ दी जाएगी 7:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। युवानी कार्यक्रम में 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% तथा न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:10 पर।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से श्री विजयपुरम आने वाला विमान उड़ान संख्या 2937 सुबह 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 सुबह 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त विमान उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं एक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएटेड उम्मीदवार जिन्होंने हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन

0: कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। अब बिजली सप्लाई की जरूरी सूचना। सभी बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को बताया जाता है कि कल 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक जरूरी बिजली के काम के कारण बिजली सप्लाई बंद रह सकती है। इस दौरान पैंथर 1 और पैंथर 2 लाइन बंद रहेगी और दूसरी लाइनों से बिजली सप्लाई देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी खराबी या किसी दूसरी ज़रूरी वजह से श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो सकती है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: बीड़ी सिगरेट का धुआं धूम्रपान ना करने वालों के लिए भी हानिकारक है। ये गले से अंदर जाके ना सिर्फ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कुछ ही मिनटों में खून को गाढ़ा करके दिल तक जाने वाली मुख्य नसों को नष्ट कर देता है। इससे दिल में खून संचार कम होने लगता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। पैसिव स्मोकिंग जानलेवा है, इसे नकारें। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पे कॉल करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में आयोजित बैठक के दौरान जलापूर्ति और सड़कों के सुधार की स्थिति की समीक्षा की। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के सिलसिले में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है और CFO नाला स्टील वैली ब्रिज के मरम्मत कार्य के मद्देनज़र 11 अक्टूबर तक सड़क बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान द्वीपों में जलापूर्ति की समग्र स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के आयुक्त सह सचिव, शहर विकास के आयुक्त सह सचिव, जिला उपायुक्त तथा अंडमान लोक निर्माण विभाग और श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान द्वीप समूह में वर्तमान जल उपलब्धता का विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया गया। उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों को जल संकट से निपटने के लिए तैयार की गई जल कार्य योजना के तहत निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अल्पकालिक उपायों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए ताकि गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उपराज्यपाल ने रटलैंड चरण दो के शेष कार्य को दिसंबर तक पूरा किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने बर्मा नाला, लाल मिट्टी और झुंझुनू नाला जैसे जल समृद्ध स्रोतों से पानी को नई जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से जल कमी वाले क्षेत्रों में योजनाओं को युद्ध स्तर पर शुरू करने व पूरा करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने प्रमुख जल अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को जल आपूर्ति से जुड़ी जन शिकायतों को प्राथमिकता देने और जारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने जारी जल आपूर्ति कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करने तथा समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। द्वीप समूह में जर्जर सड़कों की सुधार और नई सड़कों के निर्माण के संबंध में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग ने कल लोक निवास में आयोजित बैठक

के दौरान प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना पर एक प्रस्तुति दी। बैठक में उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को परियोजना में तेजी लाने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित विभाग को पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं और आवश्यक गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए परियोजना की नियमित निगरानी और निर्माण कार्यों के समय पर समाप्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के सिलसिले में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये अभियान 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी पर आधारित है। इस दौरान मुख्य सेविकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में पोषण रैलियों, खाना पकाने के प्रदर्शन, स्वास्थ्य एवं विकास निगरानी गतिविधियों

0: का आयोजन किया जा रहा है। ये अभियान 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। यह अभियान राष्ट्रीय थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी पर आधारित है। इस दौरान मुख्य सेविकाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रीय कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में पोषण रैलियों, खाना पकाने के प्रदर्शन, स्वास्थ्य एवं विकास निगरानी गतिविधियों, जागरूकता सत्रों और सामुदायिक स्तर की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्योत्तर अंडमान के एकीकृत व्यसन मुक्ति पुनर्वास केंद्र ने चाइल्ड हेल्पलाइन और उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बकुंतला में पूर्व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने विद्यार्थियों से नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने व अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। IRCA के परियोजना समन्वयक ने विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों और मानस हेल्पलाइन 1933 के बारे में जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: अब श्री विजयपुरम में हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलीघट लेकर आया है महिलाओं के लिए विशेष स्त्री रोग एवं आधुनिक अल्ट्रासाउंड सेवाएं एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग एवं निसंतानता संबंधी परामर्श के लिए उपलब्ध है गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। माहवारी की समस्या PCOS गर्भावस्था की देखभाल गर्भधारण में कठिनाई तथा महिलाओं की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर सेवाएं प्रेगनेंसी स्कैन एनोमली स्कैन एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर स्टडीज। तो देर न करें अपने स्वास्थ्य को दे विशेषज्ञ देखभाल। आज ही अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9933219444 या 89000914124। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक अनन मार्ग रोड जुंगलीघाट श्री विजयपुरम।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। CFO नाला स्टील वैली ब्रिज के मरम्मत कार्य के मद्देनज़र आज से 11 अक्टूबर तक पुल पर आवाजाही और सड़क बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मध्योत्तर अंडमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यपालक अभियंता को स्टील वैली ब्रिज का मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिंदी को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका कुमारी कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी के कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उधर पुलिस मुख्यालय में भी आयोजित हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस बीच इग्नो के क्षेत्रीय कार्यालय में भी हिंदी पखवाड़े का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस समारोह में हस्ताक्षर अभियान राष्ट्रीय वेबिनार तथा अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा आज से 9 अक्टूबर तक श्री विजयपुरम परीक्षा केंद्र में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

0: टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में गणित विषय के द्वितीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम में एक रिक्त पड़ी सीट पर प्रवेश के लिए परामर्श लिया जाएगा। परामर्श 3 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे कॉलेज में रखा गया है। इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में आयोजित बैठक के दौरान जलापूर्ति और सड़कों के सुधार की स्थिति की समीक्षा की। 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के सिलसिले में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है और CFO नाला स्टील वैली ब्रिज के मरम्मत कार्य के मद्देनज़र 11 अक्टूबर तक सड़क बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देश रागिनी।

श्रोताओं, अपना देश केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि करोड़ों लोगों के सपने, संस्कारों और त्याग का प्रतीक होता है। जब देशभक्ति की भावना दिल में जगती है, तब हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा होता है।

श्रोताओं, भारत की यह पावन धरती सदियों से प्रेम, शांति और आशा का संदेश देती आई है। इसकी मिट्टी में वह अपनापन है जो हर दिल को रोशनी और विश्वास से भर देता है। आइए इसी उजाले और उम्मीद की भावना से सजा यह गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, देश को अच्छा बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने विचार से यही सच्ची देशभक्ति है और यही इस पंक्ति की असली संदेश। अब चाहेंगे कार्यक्रम से इजाज़त।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

नमस्कार श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। लीजिए पहले सुनिए साहित्य दर्पण कार्यक्रम के तहत कवयित्री डॉक्टर एन लक्ष्मी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में इस विषय पर स्वरचित काव्य पाठ।

नमस्कार साथियों, प्रतिवर्ष पहली अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था बस जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहां जीवन के अनुभवों की गहराई होती है और अपनों से अपनेपन की कामना होती है। हमारे घर के बुजुर्ग केवल हमारे परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं, संस्कारों और जीवन मूल्यों के जीवंत धरोहर होते हैं। हम भी एक दिन जीवन के अनुभवों के साथ उस पड़ाव पर पहुंचेंगे। इस बात का सदा याद रखते हुए हमें वृद्ध जनों के प्रति प्रेम और अपनेपन का भाव रखना चाहिए। जिन हाथों ने हमें थाम कर चलना सिखाया, जिन अनुभवों ने जीवन का अर्थ समझाया, आइए आज उन्हीं बुजुर्गों के प्रति सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता के दीप जलाएं, क्योंकि उनका होना हमारे जीवन की सबसे अनमोल विरासत है। कुछ इसी प्रकार के भाव लेकर मैं डॉक्टर एन लक्ष्मी वृद्धजनों को नमन करते हुए अपनी कविता को प्रस्तुत करती हूँ, जो सभी वृद्धजनों को समर्पित है। तो चलिए कविता में डुबकी लगाइए और कविता का आनंद लीजिए। मेरी पहली कविता है दो पल साथ। जिन हाथों ने थाम कर हमको चलना सिखलाया, जिन हाथों ने थाम कर हमें चलना सिखलाया, अपनी खुशियां भूलकर हमको जीना सिखलाया, आज वही हाथ कांपते हैं, आज वही हाथ कांपते हैं, कदम भी धीमे हैं, आज वही हाथ कांपते हैं, कदम भी धीमे हैं, पर उनके अनुभव के आगे हम सब अभी बच्चे हैं, पर उनके अनुभव के आगे हम सभी बच्चे हैं। उन्हें न महल चाहिए, न धन दौलत, न सम्मान। उन्हें न महल चाहिए, धन दौलत, न सम्मान। उन्हें चाहिए तो बस दो पल कोई पास बैठें, उनका हाथ थाम लें और पूछें, कैसे हैं आप? कोई उनके पास बैठें, हाथ थाम लें और पूछें, कैसे हैं आप? कल हमारी बारी होगी, इतना याद रहे। आज जो समय हम देंगे उन्हें, कल वही लौटकर हमारे पास रहे। आज जो समय हम देंगे उन्हें, कल वही लौटकर हमारे पास रहे। दूसरी कविता है वृद्धावस्था। उम्र ढली है, देह गली है। उम्र ढली है, देह गली है, अब पहले की वो बात नहीं। खाट पर पड़ा रहता हूँ, आंखों में भी वो चमक नहीं। सोचा था जीवन मेरा है, सोचा था जीवन मेरा है, मैं ही इसका मालिक हूँ। समय हंसकर कहता रहा, तू बस इसका यात्री है। जिन रिश्तों को बांध रखा था, जिन रिश्तों को बांध रखा था, वे भी समय के साथ ढले। कोई आगे, कोई पीछे छूटा, सब अपने अपने राह चले। अब समझ आया जीवन

शायद पाने का नाम नहीं होता। अब मुझे समझ आया कि जीवन शायद पाने का नाम नहीं होता, जो पल मिला उसे जी लेना, जो पल मिला उसे जी लेना, कल का कोई ठिकाना नहीं होता। आँखों की यह बुझती लौ भी शायद कोई संदेश कहे, अंत नहीं है ढलती सांझ, बस दिन ने अपने रंग सहे, अंत नहीं है ढलती सांझ, बस दिन ने अपने रंग सहे। एक और कविता है जिसका शीर्षक है वृद्धाश्रम। यहाँ किसी की आंखों में आंसू, यहाँ किसी की आंखों में आंसू, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, हर कमरे में एक कहानी है, हर दिल में कोई अरमान है। किसी के बेटे दूर शहर में, किसी की बेटी परदेस गई है, किसी के बेटे दूर शहर में, किसी की बेटी परदेस गई है, किसी से उनके अपनों ने उनकी दुनिया छीन ली है। कोई बोझ न बनना चाहता था, इसलिए यहाँ चला आया, कोई बोझ न बनना चाहता था, इसलिए यहाँ चला आया, कोई अपनों से रूठा नहीं था, बस हालातों ने दूर कराया, कोई अपनों से रूठा नहीं था, बस हालातों ने दूर कराया। घर में बूढ़े माँ बाप रहें तो उसे बोझ कभी मत मानो, कल हम सब इस राह के यात्री हैं, आज ही यह सच पहचानो। मेरी एक और कविता है। जिस घर की नींव में मेरी जवानी चुंदी गई, आज उसी घर की चौखट पर मैं अपनी जगह खोजता हूँ। कभी मुट्ठी में भविष्य था, कंधों पर पूरे परिवार का भार, कभी मुट्ठी में भविष्य था, कंधों पर पूरे परिवार का भार, अपनी भूख को टालकर बच्चों के हिस्से का संसार। वक्त बीता बच्चे बड़े हुए उनके आकाश फैल गए और मेरा आसमान एक छोटे से कमरे में सिमट गया। अब सुबह खिड़की से नहीं आती कोई आवाज़, चाय ठंडी हो जाती है पर इंतज़ार गर्म रहता है। दवा की शीशी तकिए के पास रखी है, चश्मा किताब पर खुला है, बस पढ़ने वाली आंखों में अब अक्षरों से ज़्यादा पुराने चेहरे दिखाई देते हैं। कभी दरवाज़ा खुलता है तो दिल अचानक जवान हो जाता है, शायद कोई अपना आया है, पर अक्सर हवा ही होती है। कितना विचित्र है बुढ़ापा, शरीर को सहारे की ज़रूरत होती है और मन को सिर्फ दो अपनेपन भरे शब्दों की। कितना विचित्र है बुढ़ापा, शरीर को सहारे की ज़रूरत होती है और मन को सिर्फ दो अपनेपन भरे शब्दों की। मैंने बच्चों को उड़ना सिखाया था, यह नहीं सोचा था कि उनके उड़ने के बाद आंगन इतना खाली हो जाएगा। अब कोई शिकायत नहीं, बस एक सवाल कभी कभी भीतर उठता है। क्या जीवन भर किसी के लिए जीते जीते एक दिन ऐसा भी आता है जब उसी के पास आपके लिए समय नहीं बचता? शाम उतरती है, दीवार पर मेरी परछाई लंबी होती जाती है, मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा दरवाजे को देखता रहता हूँ। शायद कोई आए, मेरे पास बैठे और बिना कुछ पूछे बस मेरा हाथ थाम लें, क्योंकि इस उम्र में रोटी से ज़्यादा साद की भूख लगती है और मृत्यु से पहले मनुष्य मरता तब है जब उसे यह महसूस हो जाए उसके होने और ना होने के बीच अब किसी के जीवन में कोई अंतर नहीं रहा। मैं अभी जीवित हूँ।

मैं अभी जीवित हूं, मेरी सांसों में कुछ उजाला बाकी है। बस कोई इतना कर दे, बस कोई इतना कर दे, मेरी ढलती शाम में कुछ देर बैठ जाए। फिर शायद यह बुढ़ापा इतना अकेला ना लगे। फिर शायद यह बुढ़ापा इतना अकेला ना लगे। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अभी आप साहित्य दर्पण के तहत कवित्री डॉक्टर एन लक्ष्मी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में इस विषय पर स्वरचित काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, हम जल्द ही लौटेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। हेट स्टोरी 2, आइए सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत जिसे लिखा है तनवीर गाजी ने, स्वर बनाई हैं राशिद खान ने और गायक कलाकार है के।

अगला गीत जो आप सुनेंगे उसे आवाज़ें दी हैं पंकज उदास और साधना सरगम ने। फिल्म का नाम है मोहरा। गाने के बोल लिखे हैं इंदीवर ने तथा संगीत दिया है आनंद बख्शी ने।

0: श्रोताओं, एक सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के

0: वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बस इतना सा ख्वाब है का गीत। गोल्डी भेल के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी है अलका याग्निक और शान ने, और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 विदेश मंत्रियों के

0: साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक सौनी योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते, इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी

0: के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
1: बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर

0: 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुँच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहियां पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, NCERT की नई किताब में मेवाड़ की

0: the scrolling Gen Z audience from discovery to fandom to purchase without losing them to a rival. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyiba terrorist killed in an encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecasts heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8:31 हुए हैं। श्रोताओं, एक सूचना।
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की? अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अप्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के हमारे फनकार हैं कामलिनी मल्होत्रा और नूरजहान। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं कामलिनी मल्होत्रा को।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए चंद फिल्मी गीत। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉबी जासूस से, पापोन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत रचना सवानंद किरकिरे की और संगीत दिया है शांतनु मित्रा ने।

0: इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं एक कंप्लेंट ऑफिसर और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1,00,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1,00,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड AIDS एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या?
1: श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक विलन से। अंकित तिवारी की आवाज़ में गीत रचना मनोज मुंतशिर की और संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

श्रोताओं, अभी आप चंद फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:10 होने वाले हैं। अब अगला प्रसारण हमारे

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे हैं 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा की। आज के हमारे खास अतिथि हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, जो कि 16वें फाइनेंस कमीशन के सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं और साथ ही साथ SBI के चीफ ग्रुप इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। नमस्कार डॉक्टर सौम्या कांति घोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: चर्चा शुरू करने से पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि पिछले वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों ने अर्थव्यवस्था को किस तरह नई गति देने में योगदान दिया है।
3: एक समय भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती थी। बैंकों की फाइलों में ऐसे ऋण बढ़ रहे थे जिनकी वापसी मुश्किल हो रही थी। इन्हें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कहा जाता है। इसका असर सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं था। जब बैंक का पैसा फंसा रहता है तो नए ऋण देने की उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बैंक और कंपनियों की कमजोर बैलेंस शीट ने मिलकर उस समय ट्विन बैलेंस शीट की समस्या को जन्म दिया था। इसी चुनौती से निपटने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू हुई। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था एसेट क्वालिटी रिव्यू, यानी बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता की विस्तृत जांच। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015 में एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि बैंकों की किताबों में छिपे वित्तीय दबाव को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाए और खराब ऋणों की सही पहचान की जा सके। खराब ऋणों की पहचान के बाद अगली चुनौती थी इनका समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में वर्ष 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यानी IBC लागू किया गया। इसका उद्देश्य कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के दिवालियापन और ऋण समाधान के लिए एक समयबद्ध और व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध कराना था। IBC के तहत ऋणदाता और देनदार दोनों के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की महत्वपूर्ण भूमिका है। NCLT समक्ष कॉरपोरेट दिवाला समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जबकि इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए NCLT का प्रावधान है। वहीं IBC के क्रियान्वयन और उससे जुड़े पेशेवर तंत्र की निगरानी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI की स्थापना की गई। IBBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक IBC के तहत कुल 1194 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी थी। रिपोर्ट ये भी बताती है इस व्यवस्था के कारण कई मामलों में दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही देनदारों ने अपने बकाए का निपटारा किया। लेकिन केवल खराब ऋणों की पहचान और समाधान ही पर्याप्त नहीं था, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी होना भी जरूरी था ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सके और नए ऋण उपलब्ध करा सके। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में कदम उठाए। पूंजी बढ़ने से बैंकों को अपने वित्तीय आधार को मजबूत करने और ऋण देने की क्षमता बनाए रखने में मदद मिली। RBI के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण ने भी बैंकों की पूंजी स्थिति मजबूत करने में योगदान दिया। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी। इसका उद्देश्य बैंकों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाना, उनकी परिचालन क्षमता बढ़ाना और बेहतर तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2020 के बीच कई बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय हुआ और वर्तमान में देश में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। बैंकिंग सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा बैंकों के कामकाज में बेहतर प्रशासन, जोखिम प्रबंधन और तकनीक का इस्तेमाल। सार्वजनिक क्षेत्र के

0: बैंकों में ईज यानी इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस जैसे सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से शासन जिम्मेदार ऋण वितरण जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित बैंकिंग पर जोर दिया गया। इन सभी कदमों का व्यापक उद्देश्य एक ही था, बैंकिंग व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना, वित्तीय जोखिम को कम करना और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रभाव को बेहतर करना। इन सुधारों के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न संकेतकों में भी दिखाई दिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल NPA अनुपात मार्च 2016 में 14.5% था, जो मार्च 2024 तक घटकर 2.8% रह गया। सर्वेक्षण के अनुसार बैंकिंग नियमन को मजबूत करने, ऋण वसूली कानूनों में बदलाव, IBC और अन्य उपायों ने बैंक तथा कॉरपोरेट क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुधारने में योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया 2018-19 से जारी रही और सितंबर 2023 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल NPA अनुपात एक दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही बदलाव उस स्थिति की ओर संकेत करता है जिसे आर्थिक सर्वेक्षण ने ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज के रूप में रेखांकित किया है, यानी बैंक और कॉरपोरेट क्षेत्र दोनों की बैलेंस शीट में पहले की तुलना में सुधार। मजबूत बैंकिंग व्यवस्था का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक अर्थव्यवस्था में बचत को निवेश में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर होती है तो वे कारोबार, उद्योग और आम लोगों की ऋण जरूरतों को अधिक मजबूती से पूरा कर सकते हैं। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: डॉक्टर घोष, इससे पहले कि हम एसेट क्वालिटी रिव्यू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड या फिर बैंक रिकैपिटलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर्स के बारे में चर्चा करें, हम थोड़ी सी नजर हमारे अर्थव्यवस्था के हाल पर डालना चाहेंगे। 90 से लेकर अब तक हमारी अर्थव्यवस्था किस माहौल से, किस दौर से गुजर रही थी?
2: इंडियन इकोनॉमी ने, अगर आप इसका जर्नी देखते हैं कि 1990 से अगर हम शुरू करते हैं, 1991 में जब पहले हम रिफॉर्म शुरू किया था, उसी टाइम में रिफॉर्म वाज बिकॉज ऑफ नेसेसिटी एंड कॉम्पल्शन। नाउ रिफॉर्म इज बेसिकली एक पार्ट है, हमको रिफॉर्म करना है क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। उसी टाइम भी हमने रिफॉर्म किया था, काफी मार्केट में रिफॉर्म किया था, एक्सटर्नल सेक्टर में रिफॉर्म किया था, रूपी को हमने डिवैल्यू किया था, लाइसेंसिंग राज को खत्म करने का कोशिश किया था। लेकिन काफी सारे उसके बाद 1996 के बाद 1990 से 2004 का जो पहले जो सेशन था NDA, उसमें तो इतने सारे रिफॉर्म्स हुए थे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसमें आपको पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने थे, टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ थे, पावर सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फिर उसी टाइम में आपको क्रेडिट ब्यूरो का भी आपका स्थापना हुआ था, और उसी टाइम इतने सारे रिफॉर्म्स हुआ था। उसी टाइम में आपको FRBM कमिटी का भी रिफॉर्म हुआ था, और मॉनेटरी पॉलिसी का जो होता है उसमें हमने पहले बार देखा था कि मार्केट पे उसको एक जो बोलते हैं कि रिपोर्ट जो आदम जानते हैं, जहां से वो सब लोग उसको देख के बैंक्स बोरो करते हैं, तो ये सारे रिफॉर्म्स उसी टाइम में हुआ था। पावर सेक्टर का पहले जो रिफॉर्म था, क्योंकि आपको पता है कि पावर सेक्टर एक काफी सेंसिटिव इश्यू है, और अभी से लास्ट 30 साल से पावर सेक्टर को हम रिफॉर्म करने चाहते हैं, तो उसी टाइम खास पावर सेक्टर के भी रिफॉर्म हमने लेके आए थे। तो बहुत सारे रिफॉर्म उसी टाइम चालू हुआ था। फिर 2004 से अगर हम देखें, उसके बाद हमारा उसी जो 4 से 8 में ग्रोथ हमारा अच्छा था, उसी टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था ग्रोथ का जो पुश था, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी उसी टाइम बहुत अच्छा कर रहे थे। तो उसके लिए क्या हुआ था, ग्लोबल इकोनॉमी का मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी को भी मिल गया था, इसके लिए उसी टाइम हम अच्छा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2007-08 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था 2008-09 में जो क्राइसिस के बाद, उसी टाइम क्या हुआ था, उसी टाइम हम बहुत सारे एक्चुअली हमने बहुत फिजिकली एक्स्ट्रा वैकेंट हो गया था। आपका अगर याद है 2009 में हमने पे कमीशन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया था
1: जी।
2: हमने उसके साथ हमने जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है उसको भी हमने इम्प्लीमेंट किया था, और उसके साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो बोलते हैं वो भी काफी बढ़ गया था। उसके लिए क्या हुआ, उसके बाद से इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम शुरू हो गया, और उसके बाद आपको उसी टाइम इन्फ्लेशन जो था वो 10% से ऊपर रहते थे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक टैग आ गया कि हमने फ्रेजाइल 5 का हो गया। बैंकिंग सेक्टर का उसी टाइम एसेट क्वालिटी खराब होना शुरू किया, और ये क्या हुआ था कि उसी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बैंक्स ने लेन किया था। लेकिन उसका इशू क्या था कि क्योंकि ग्लोबली जो कमोडिटी साइकिल था उसी टाइम बहुत ऊपर था, लेकिन उसके बाद उसका प्राइसेस का दाम कम हो गया, इसके लिए जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें सारे उनका लोन

0: काफी बिगड़ गया। फिर उसके बाद क्या किया, 2015 के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड किया कि हमको सारे बैंक्स को क्लीन अप करके एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आना है। तो उन्होंने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, फिर सारे बैंक्स को एसेट क्वालिटी रिव्यू लेके आए थे, जितना उसका लोन्स था वो लोन्स को रिकोगनाइज किया, हाँ ये लोन्स बैड लोन्स है, ये हम वापस नहीं कर सकते। उसके लिए बैंक्स का जो था पोजिशन बढ़ गया था, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गया था और सारे जो नंबर्स था वो बिगड़ गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन भी गवर्नमेंट ने किया था और उसके बाद उनका साथ उन्होंने ईज ऑफ बैंकिंग को रिफॉर्म्स किया था। तो इसके चलते क्या हुआ, 3-4-5 साल के बाद बैंकिंग सेक्टर का हालत, पैंडेमिक के बाद आपको पता है कि पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी बंद हो गया, लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग सिस्टम उसपे एक्चुअली वो अच्छा किया उसी टाइम में। तो मैं आपको कुछ अगर नंबर बताऊं कि ये जो AQR हुआ, फिर बैंकिंग सेक्टर में लास्ट 10 साल में जितने उन्होंने रिफॉर्म्स लेके गवर्नमेंट आया है, उसको हम ईज रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसमें बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन किया था, बैंक को रिकॉन्सोलिडेशन किया है, बैंक्स नॉर्म्स को चेंज किया है और बैंक्स को पूरा फ्रीडम दिया है कि आप इसको काम कीजिए। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, कुछ डेटा 2017-18 में बैंकिंग प्रॉफिट था नेगेटिव, मैंने 32,400 करोड़ सारे बैंक्स का प्रॉफिट था 2017-18। आज का दिन 2025-26 में बैंक का प्रॉफिट है 4 लाख करोड़। तो उसका मतलब ये प्रॉफिट आपको 5 गुना बढ़ गया, 5 से 6 गुना बढ़ गया। ग्रॉस एनपीए रेशियो रिकॉग्निशन हम AQR करने के लिए जो 11% था 2017-18 में, आज का दिनों नंबर है 1.7%, तो सबसे अच्छा नंबर है 13 साल का। नेट एनपीओ रेशियो उसका मतलब कितना जो लोन हमारा खड़ा था उसका हमने प्रोविजन किया, आज उसका रेशियो है 0.4%। उसका मतलब बैंकिंग सेक्टर का जो सारे लोन्स है वो सारे लोन्स एडिक्वेटली कवर्ड है। स्लिपेज रेशियो जो हम बोलते हैं कितना लोन, वो 7.5% था उसी टाइम में, आज वो 1% का आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है, 2017-18 में प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 174% गिरा था, आज का दिन वो 2025-26 में और 26-27 में वो 10% से ऊपर से ग्रो कर रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सारे नंबर्स आज काफी अच्छा है। और हमको अनुमान है कि ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो हुआ है, काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, और एक जो सबसे बड़ा रिफॉर्म्स इसमें जो हुआ है अपार्ट फ्रॉम द AQR, सेक्टर वाइज अगर आप मुझे पूछे, SME जो सेक्टर है आपका, जो पता है जो बैंकिंग सेक्टर जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है 18-19% हो रहा है, बहुत लोग हमको पूछते हैं कि आपको इतना क्रेडिट ग्रोथ कैसे होगा, आगे जाके ये चल सकते हैं कि नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है कि इसमें ये SME क्रेडिट ग्रोथ 23-24% लास्ट 2 साल से चल रहा है एंड दे आर ऑल सॉलिड ग्रोथ। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिया इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और बैंकिंग सिस्टम में जुड़ा है, वैल्यू चेन में ऊपर गया है और आज का दिन उसका हमने उसका बेनिफिट्स देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे गया है। पहले भी रिफॉर्म्स हुआ था 1998 में, अगर आप देखें उसी जो हमने आपके पहले बोला, उसी टाइम नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन आए थे, फिर उसके बाद बेसिल कमेटी रिकमेंडेशन भी उसी टाइम चालू हुआ था, फिर 2014 के बाद हमने काफी सारे रिफॉर्म्स किया। एक तो उसमें है जो रिकवरी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो हमने किया है। तो मुझे चलते ये लगता है कि बैंकिंग सेक्टर इज नाउ पॉइज्ड फॉर एन वेरी गुड रन, बिकॉज इसका जो बेसिस है वो काफी सॉलिड है इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड अदर पैरामीटर्स।
1: जी बिल्कुल। और अब इन्हीं सब विषयों के बारे में थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं एसेट क्वालिटी रिव्यू से। हमारा मानना यह है कि हमारी जो सरकार है उनकी योजना हमेशा से रही है कि पहले समस्या को ढूंढा जाए, फिर उसका समाधान ढूंढा जाए और फिर बैंकिंग सेक्टर में मजबूती लाई जाए। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो पहले समस्या को ढूंढने पर निर्भर था और उसके जरिए बैंकों की जो स्ट्रेस लोन्स की स्थिति थी वो ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आए। तो आपके नजरिए से एसेट क्वालिटी रिव्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर में बाद में सुधार लाने में इसकी क्या भूमिका रही?
0: देखिए, एसेट क्वालिटी रिव्यू तो इनेविटेबल था। प्रॉब्लम ये था कि हम उसको पहले 2009 के बाद जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में गया था, हम हो सकते थे उसी टाइम जो लोन खराब है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं। हम उसको 3-4 साल ऐसे जाने दिया कि उसको हम नहीं करें, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन आगे जाके जो होना था वही हुआ, जैसे ही ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ था, ये सारे जो लोन्स था बिगड़ गया। और इसमें आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो बैंक्स का लोन था 20-30% सारे लोन मोस्टली उसी सेक्टर्स में उस पर बिगड़ गया था, रोड्स था, पावर।

0: था, ट्रांसपोर्ट था, इस पे काफी सारे लोन आपका बिगड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बिगड़ गया उसके बाद आरबीआई ने एक रिफॉर्म्स लाए, AQR रिव्यू, इसको हम बोलते हैं RRR, रिफॉर्म्स रिकैपिटलाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। तो रिफॉर्म्स किया, रिकैपिटलाइजेशन गवर्नमेंट में 3 trillion रिकैपिटलाइज किया, फिर रिजोल्यूशन किया और रिफॉर्म्स किया। तो ये तीनों आरओ करके बैंकिंग सेक्टर में और जो ग्रोथ हुआ, और सबसे बड़ा चीज कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का आज जो क्रेडिट ग्रोथ है, जो नंबर्स है, वो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से भी अच्छा है, ये पहले था नहीं। तो ये जो आप बीच बीच में, आप काफी टाइम आपने ये बात सुनता है कि इतने सारे लोन्स को हमने बैंक्स का राइट ऑफ कर दिया, ये बेसिकली AQR था। ये लोन जो पहले था, ये लोन को आपको क्लीन अप करना था, क्लीन अप पहले हुआ नहीं, बाद में क्लीन अप हुआ, जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का नेगेटिव था, आज जो 4 लाख करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी है। और मैं आपको बाकी भी जो नंबर्स दिया कि लिक्विडिटी देखिए, अर्निंग्स देखिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सारे नंबर्स डिकेड हाई में है। तो मेरे यही कहना है कि AQR इनेविटेबल, एक नेसेसरी इविल था, हम उसको करना था, हमने कर लिया। दो तीन साल के लिए बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद सारे बैंक्स इन इंडिया आर ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वार फुटिंग एंड स्ट्रॉन्ग फुटिंग। एंड मुझे लगता है कि जो अब इकोनॉमी आज ग्रो हो रहा है 18 to 19% में, जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, इसका रीजन हम उस रिफॉर्म्स के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सारे सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, हमने SME में भी काफी रिफॉर्म्स किया, हम बाकी जो सेक्टर्स लोन से, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने रिफॉर्म्स किया है, जो लोन्स का जो रूल्स है उसको भी हमने अच्छा किया, बैंक्स का अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हो गया। तो सारे चीज अगर हम मिला, सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सब डिजिटाइज हो गया। अगर आपको आज का दिन आपको अगर कुछ लोन चाहिए तो आप उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर है। तो सारे चीज मिला के आई थिंक ये बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आज बैंकिंग सेक्टर एक्चुअली एक ग्रोथ का बैकबोन हो गया, एंड इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि हाउ कैन अ बैंकिंग सेक्टर टेक फॉरवर्ड एन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द फाइनेंशियल इकोनॉमी क्रेडिट नीड्स।
1: आपने SMEs का भी जिक्र किया था अपने जवाब में, तो मैं चाहूंगी कि आप SME सेक्टर में जो रिफॉर्म आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, और साथ ही साथ 2016 में आए IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड के बारे में भी बताएं, और IBC के आने के बाद कंपनियों के बैड लोन से निपटने के तरीके में किस तरह बदलाव आया।
0: देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो मैं IBC लेके आता हूँ। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी को 2016 में आए थे, और वो बेसिकली वो एक डिमांड था बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि अगर हमको कोई लोन को रिजोल्व करना है उसको हमको कोर्ट, अगर नहीं होता है उसको हम एक कलेक्टिव मेकानिज्म में डालेंगे, उसमें उसका रिजोल्यूशन होगा। पहले क्या होता था कि अगर हम किसी को रिजोल्यूशन के लिए बैंकिंग सेक्टर किसी प्रोमोटर से किसी को बुलाते थे, वो करते नहीं था। तो ये कोड आने के बाद ये उनके लिए मस्ट हो गया, अगर आप सेटलमेंट नहीं करेंगे तो ये आपको मार्केट में चला जाएंगे, दूसरा किसी का हाथ में चला जाएंगे। ये जो हम बार बार बोलते हैं ना कि आप अगर ये देख डिबेट देखे, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव डिबेट है कि इतना पैसा आपने लोन उसको मकूब कर दिया, लेकिन उनके साथ ये बात भी बोलना है कि लोन राइट ऑफ जो होता है बैंकिंग सेक्टर क्लीन अप के लिए, उसके बाद उनके हाथों से उस कंपनी का मैनेजमेंट चला जाते हैं, बिकॉज ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड में एक बीडिंग होता है, जो सबसे अच्छा बीट करेंगे उसको कंपनी मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि काफी स्टील सेक्टर में, जो सबसे खराब सिचुएशन से गुजरा था, सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन स्टील सेक्टर में हुआ था। कुछ कंपनीज का नाम आपको पता है, तो भूषण स्टील फॉर एग्जाम्पल, उसको टेक ओवर हुआ और उसी टाइम में करके वो कंपनी आगे चलते रहा। तो ये तो पहला बात है। दूसरा बात है कि अगर आप SME सेक्टर को बात करें, SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। पहले रिफॉर्म्स जो आए थे कि वो जो ECLGS स्कीम, बेसिकली लोन गारंटी, गवर्नमेंट में बोला था कि जो लोन बैंक्स एक्सटेंड करेंगे पैंडेमिक टाइम्स पे, उसके लिए कोई उसको रिस्क वेट नहीं लगेंगे, तो उसके लिए वो लोन काफी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट में फिर ECLGS लेके, आपको अगर पता है कि कुछ दिन पहले ये वेस्ट एशियन क्राइसिस में ECLGS में 2,50,000 करोड़ का लोन बैंकिंग सिस्टम ने दिया है। और उसके साथ SME सेक्टर में काफी सारे रिफॉर्म्स आए। एक तो फॉर एग्जाम्पल, जो SME सेक्टर में अभी स्ट्रीमलाइंड हो गया, लोन अगर मिलना है तो आपको पास अगर पेपर्स है प्रॉपर, ये लोन आप 59 मिनट्स में मिल सकते हैं। उसके बाद जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थे SME सेक्टर, उसको भी सिंप्लीफाई हुआ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक पोर्टल खुला हुआ है, उसका आपको पता है कि उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उसमें जितने सारे MSME सेक्टर का प्लेयर्स है जो फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वहां पर आप उसका अगर नाम डालेंगे तो

0: बैंकिंग सेक्टर से आप जोड़ सकते हैं। तो सारे चीज अगर देखे, ये सारे चीज देख के आज का दिन मुझे आश्चर्य नहीं लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ एसएमई सेक्टर का 24% चल रहा है। एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ का पोटेंशियल काफी हाई है, क्योंकि जो उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है वो 7 करोड़ का ऊपर है, और हमको 7 करोड़ में अगर पहुंचना है तो हमको और ज्यादा लोन एमएसएमई सेक्टर को हम दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपका डिजिटाइजेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, अब रिकॉर्ड आपके पास हो जाते हैं, आप देन लोन देना आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो यही चीज सबसे अच्छा हुआ है एसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि पहले ये लोग का बीच जो पेपर्स था वो फॉर्मलाइज नहीं था। अभी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इनका बैंकिंग सेक्टर में इससे जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक छोटा सा चीज में इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए बोलना चाहता हूँ। इंसॉल्वेंसी कोर्ट के लिए आपने सुना है कि बीच बीच में एक खबर आते हैं कि इसका जो रिकवरी हुआ है बहुत कम हुआ है, इसका रिकवरी और होना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इसमें एक बात आपको मानना चाहिए कि बीच में जब इंसॉल्वेंसी कोर्ट का दो फेज है, पैंडेमिक का पहले, पैंडेमिक के बाद। पैंडेमिक का पहले क्या हो रहा था कि पैंडेमिक का पहले उन्हें कोर्ट पे बहुत अच्छा रिकवरी हुआ, लेकिन पैंडेमिक के बाद शायद 1-2 साल आपको पता है कि कोर्ट बंद था, काम नहीं हुआ, उसके लिए काफी सारे आपको बैकलॉग आ गया। तो हो सकता है कि इसमें हम और कुछ रिफॉर्म करें, और कुछ सुधार लेके आए, और ज्यादा कोर्ट्स बनाए, और थोड़ा जैसे मैकेनिज्म है थोड़ा ठीक से देखे, तो इसमें इंप्रूवमेंट आनी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई जब लॉ आते हैं उस लॉ में अमेंडमेंट्स लेके उसको हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं। तो हो सकते हैं मैं फ्यूचर में इसका हम इंप्रूवमेंट में इसका कुछ स्कोप है, बट ऑन द होल ये अच्छी रिफॉर्म्स है। एंड हमको जानना, आपको मानना पड़ेंगे कि इस रिफॉर्म्स के लिए जो कंपनी का कंट्रोल आपका हाथों में होता है वो चला जाते हैं दूसरा किसी का हाथों में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये रिजोल्यूशन कोर्ट का।
1: इससे पहले कि मैं आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एनक्लैट और एनसीएलटी की चर्चा करूं, मैं आपसे एक और विषय में बात करना चाहती हूं जो कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बैंक्स थे जो कि स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, और दूसरी तरफ थी हमारी कंपनीज जो कि सेम समस्या से गुजर रही थी। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसको एक साथ एड्रेस करना कितना जरूरी था, बजाय इसके कि दो अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग समस्याओं का समाधान होता। यानी एक तरफ हम बैंकों का समाधान ढूंढते और दूसरी तरफ हम कंपनियों के खराब हुए लोन्स का समाधान ढूंढते।
0: देखिए, ये दोनों चीज एक साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आए, बैंक्स ने रिकॉग्नाइज किया, लोन रिकवरी चालू हो गया, उसके साथ काफी सारे सेटलमेंट भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट, मतलब आप टेबल में आ जाओ, आप कितना पैसा आप दे सकते हैं उसके हिसाब से आपको सेटलमेंट होगा। तो क्या हुआ, उसके बाद ये सेटलमेंट चालू हुआ कंपनीज का, कंपनीज का बैलेंस शीट का भी काफी इंप्रूवमेंट हो गया। आपको, आप सुनने में आश्चर्य हो जाएंगे, 2020 से 2026 तक आप देखे कंपनीज को जो मार्केट से जो पैसा उठाया है 15-16 लाख करोड़, उनका ओवरऑल कैपिटल उन्होंने मार्केट से उठाया है। और अगर आपका कैश भी देखे, उसका कैश भी उसका काफी सारा अच्छा 14 से 15 लाख करोड़ कैश है। उसका मतलब कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में काफी क्लीन हो गया। उसका पैंडेमिक के टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी नीचे चला गया, इसके लिए जो पुराना लोन उन्होंने लिया था वो सारे लोन उन्होंने रीपेमेंट कर दिया। उसका बैलेंस शीट में अभी कोई लेवरेज नहीं है। तो एक तरफ बैंक का बैलेंस शीट इज परफेक्टली फाइन नाउ, कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छा अभी है, क्योंकि बैंक का कॉर्पोरेट का बैलेंस शीट में अभी कैश काफी हैंड में है, कैश इन हैंड अच्छे में है, और पैसा भी उठा सकते हैं, और उसका रेटिंग भी अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा ट्वाइन बैलेंस शीट के था, दिस इज नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट।
1: हमारे श्रोताओं के लिए एक बार आप अगर संक्षिप्त में एवरग्रीनिंग का मतलब समझा सकें तो शायद हमें आगे की बात समझने में और आसानी होगी।
0: एवरग्रीन का जो प्रॉब्लम था, पहले ये बात होते थे कि पहले जब ग्लोबल क्राइसिस के बाद 2009-10 में क्या होते थे कि एक लोन अगर खराब हो गया उसमें के उसी लोन को आप ठीक करने के लिए और लोन उस कंपनी ले रहा है किसी इंस्टीट्यूशन से, उसका हम एवरग्रीनिंग बोलते हैं। जब आपको पता है कि ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे, आप उसको और एक दूसरा लोन देंगे उसी लोन को वापस करने के लिए, तो उसका हम एवरग्रीनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए AQR रिव्यू हुआ था, देखना चाहते थे RBI गवर्नमेंट की कितना सारे स्ट्रेस बैंक के ऊपर है। ये अच्छा है कि वो हम चीज निकल लिया। बैंकिंग सेक्टर का आज जो प्रॉफिट ग्रोथ है, मैं आपको दोबारा बार बार बोलना चाहता हूँ, राजा रिकॉर्ड प्रॉफिट ग्रोथ है, और इसी आगे चलते भी बैंक का प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही रहेगा।
1: जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि समस्या के तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया समस्या को पहचानना, जो कि एसेट क्वालिटी रिव्यू ने किया। दूसरा हिस्सा हो गया समस्या का

0: समाधान ढूंढना, और तीसरा हो गया उसे इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अगर हम देखें तो IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया और NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल की बहुत अहम भूमिका रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: 2016-17 में एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी सारे लोन वेवर चलते थे। अगर कोई भी आ गया बैंक, कोई बोलते थे हम गवर्नमेंट पावर में आएंगे तो हमको लोन वेव कर देंगे। इसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो लोन वापस कर रहे थे वो भी बंद कर देते, तो वो लोन वेवर खत्म हो गया। क्योंकि अभी बहुत सारे जो फार्म स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उसके लिए आप उनको KYC उसका KCC नॉर्म्स हो गया और लोन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ा दिया। तो इसमें भी काफी सारे रिफॉर्म्स हुआ है, एलाइड सेक्टर के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स लेके आए फार्मर्स का इनकम बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स अगर आप देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात कर सकते हो, इंडस्ट्री है, रिटेल है, हार्ट सेक्टर में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए आज बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है और डिपोजिट ग्रोथ है वो इतना अच्छा देख रहे हैं। और दुनिया में अनसर्टेनिटी भरे हुए है, आपको भी पता नहीं है आज US में क्या होगा, कल क्या होगा। आज हो सकता है कि टैरिफ लग गया, हो सकता है कि कल टैरिफ हट भी गया, हो सकता है कि टैरिफ फ्यूचर में नहीं भी आया। अरे दुनिया बहुत तरफ से त्रस्त है कि क्या होने वाला है। इसका बीच में अगर इतना अच्छा परफॉर्म करना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट है। और ये जो ग्रोथ भी हो रहा है इसके लिए क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 20% के करीब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है लास्ट 2-3 साल में। ये सचमुच मुझे लगता है कि काफी सारा एक आश्चर्य नंबर है। वो समटाइम्स वी थिंक कि इतने सारे क्रेडिट ग्रोथ कैसे हो रहा है, बट इसके अगेंस्ट में सॉलिड मैक्रो फंडामेंटल्स भी बैठे हुए हैं।
0: अब वक्त आ गया है कि हम हमारी चर्चा को बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की तरफ लेकर चलें। जब हम बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की बात करते हैं तो इसमें दो अहम कदम उठाए गए थे। पहला था बैंक रिकैपिटलाइजेशन और दूसरा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करना। पहले हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो कितना अहम कदम था ताकि पुराने नुकसानों को आसानी से अब्सॉर्ब किया जा सके?
1: नहीं देखिए, रिकैपिटलाइजेशन तो करना था क्योंकि सेक्टर के लॉस था। और रिकैपिटलाइजेशन जब कैसे किया भी था, कोई इनोवेटिव उपाय से गवर्नमेंट ने किया था। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स था तो उसके लिए क्या था, वो कैश न्यूट्रल था। उसके लिए क्या हुआ था, डेट बढ़े थे लेकिन फिस्कल डिफिसिट उस पर नहीं बढ़े थे। तो सबसे बड़ा पहले ये चीज है। तो उसपे आई थिंक ये मुझे इतना याद है 3 लाख करोड़ का अराउंड रिकैपिटलाइजेशन हुआ था 1-2 साल में। तो सबसे बड़ा चीज वो था। दूसरा जो चीज था कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर उसमें बढ़ गया था। इसके लिए आगे चलते अगर गवर्नमेंट उसको स्टेक को नीचे करना चाहते हैं तो नीचे कर सकते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको अभी पता है कि वो थोड़ा सा दूसरा का बात है कि गवर्नमेंट IDBI बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले बात है। रिकैपिटलाइजेशन तो होना था, रिकैपिटलाइजेशन हमने 3 ट्रिलियन किया था, लेकिन रिकैपिटलाइजेशन हमने कैसे किया था, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से किया था। इसके लिए हमारा ये कैश न्यूट्रल था, उसका मतलब फिस्कल डेफिसिट के ऊपर हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारा डेट के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये तो पहला बात है, और ये बहुत सक्सेसफुल भी था रिकैपिटलाइजेशन एक्सरसाइज। लेकिन इसके साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, जो मार्जेस, आपको पता है कि हमारा ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक 27 था, लेकिन आज का दिन मार्जर होकर ये 12 था। आपको पता होगा कि एक गवर्नमेंट में अनाउंस किया कि एक बैंकिंग सेक्टर कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसका रोल होगा कि बैंकिंग सेक्टर का रोड मैप देखने के लिए। इंडिया में एक डिबेट है, अगर आप इंडिया को चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना में जो 4-5 लार्ज बैंक्स है, इंडिया में अभी काफी 12 लार्ज बैंक्स है। उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन GDP का 22% होता है। तो ये जो 27 से 12 हो गया, इसके लिए आपको क्या हो गया था कि कंसोलिडेशन हुआ। आगे चलते हमारा कोशिश है कि हमारा बैंक्स दुनिया के सबसे अच्छा बन गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अगर आप देखें वो बहुत ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स है। और इसका SBI फॉर एग्जाम्पल, उसका रैंकिंग भी काफी अच्छे है अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बैंक्स देखें। और आगे चलते हमारा यही कोशिश रहेगा, ये कंसोलिडेशन जो हमने 27 से 12 तक लेके आए, अगर हम और कुछ कंसोलिडेशन कर सकते हैं, दुनिया का जो सबसे अच्छी बैंक्स है उसमें हमें इंडिया का बैंक्स का भी रहेगा। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल अगर ऐसे हम चलते रहे तो अगले 4-5 साल से हम उसी तरफ जा सकते हैं।
0: डॉक्टर घोष, क्या मर्जर का मतलब हमेशा मजबूती और

0: एफिशिएंसी होता है या इसका एक दूसरा पहलू भी है?
1: नहीं देखिए, इसका पहले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको एफिशिएंसी, यानी इसको हम स्केल इकोनॉमीज बोलते हैं। जो काम आप समझ रहे हो एक बैंक कर रहे हैं, अगर दोनों बैंक एक साथ जुड़ जाए उसमें स्केल इकोनॉमीज काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक एक एरिया में अच्छा है, दूसरा बैंक दूसरा जगह में अच्छा कर रहे हैं, प्रेजेंस दूसरा तरफ है, तो अगर दोनों बैंक को आप जोड़ दे उसका प्रेजेंस भी बढ़ जाएगा, और इसको हम स्केल इकोनॉमी बोलते हैं। और उसपे क्या होता है, उसपे खर्चा भी कम हो जाता है, बिकॉज अगर सारे बैंक एक साथ आता है तो रिजर्वेशन के चक्कर में उसका खर्चा भी कम होता है। तो खर्चा कम होता है, स्केल इकोनॉमीज इंप्रूव होता है, जो अलग अलग मार्केट्स होता है कॉन्सोलिडेट हो जाते हैं, और विजन उसका एक साथ बन जाते हैं। तो आई थिंक ये बैंकिंग कॉन्सोलिडेशन एक अहम मुद्दा है, तो फ्यूचर में भी ये शायद होगा। और इंडिया को, जो मैं आपको पहले बोला कि फर्स्ट चीज हमको करना है कि बैंकिंग सेक्टर को हम आगे बढ़ाने के लिए हमको मर्जर का जरूरत है, और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बैंक्स तभी हो सकते हैं जब बहुत सारे बैंक्स एक साथ जुड़ जाए।
0: जी बिल्कुल, और इसी के साथ साथ हमारी चर्चा अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम इन सब रिफॉर्म्स को एक बड़े रूप में देखें, इफ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, तो इनके पीछे जो व्यापक विजन था वो क्या था हमारी सरकार का, हमारी लीडरशिप का, और साथ ही साथ हमारी आगे की ग्रोथ स्टोरी, हमारे बैंकिंग सेक्टर की आगे की यात्रा किस तरह की दिख रही है?
1: बैंकिंग सेक्टर, अगर आप मुझे देखें, बैंकिंग सेक्टर का फंडामेंटल साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, एसेट क्वालिटी इज वेरी गुड, अंडररेटिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, बैंक डिजिटाइजेशन एक्सरसाइज में बहुत आगे हो चुका है, बैंक्स का आज आप देखें एक फिजिटल एक्सपीरियंस है, बैंक का क्रेडिट ग्रोथ 20% तक जा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ भी आप ज्यादा होगी, एफसीएल में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का आपको पता है कि एफसीएल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में हमने 140 US बिलियन की ज्यादा मोबिलाइज किया, बैंकिंग सेक्टर का स्ट्रेंथ है, और सारे चीज मिला के मुझे इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो विजन है वो 2047 तक एक रोड मैप है, जिसी रोड मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा बैंकिंग सेक्टर की कस्टमर फर्स्ट। इसके लिए इसमें अभी जो डिजिटाइजेशन है, कंप्यूटराइजेशन है, AI का यूज करके बैंकिंग सेक्टर को उसका बेस को बढ़ा रहे हैं, और चैलेंजेस तो रहेगा, सबसे बड़ा चैलेंज जो बैंकिंग सेक्टर को रहेगा डिजिटाइजेशन का युग होगा साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए बैंक्स को उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड विल कंटिन्यूअसली हैपन, और फ्यूचर बैंक्स का इंडिया में काफी अच्छा होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में एक आई थिंक कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बोला था, शायद बिल गेट्स बोले थे कि फ्यूचर इज नॉट अबाउट बैंक्स बट इज अबाउट बैंकिंग। तो बेसिकली बैंक्स का सर्विसेज के लिए एवरीबॉडी विल बी इंटरेस्टेड। ये जो करंट जनरेशन थे 10 साल 20 साल में हो सकता है बैंक्स के तरफ लोग और ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजिकली बैंक को सेवी होना है, और ये एक प्रोसेस जो चलते रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारत का ग्रोथ स्टोरी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर होश हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें बताए और बहुत ही सफाई से हमें ये समझाया कि हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसे मजबूती की ओर बढ़ा और हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में इसकी क्या भूमिका रही। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 13वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, बैंकिंग सुधार से मजबूत अर्थव्यवस्था तक। इसमें भाग ले रहे थे 16वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्या कांति घोष। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9:45 हुए हैं। श्रोताओं, चलिए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले सुनते हैं धर्म करम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मुकेश और उनके साथियों ने। धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने और बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की।

श्रोताओं, अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। शब्द है आनंद बख्शी की, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गीत सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में सबसे पहले आगाज हम कर रहे हैं फिल्म यारिया से। गीत व संगीत है मिथुन की और गायक कलाकार है मोहम्मद इरफान और गजेंद्र वर्मा की।

हमारी अगली पेशकश है फिल्म जैकपॉट से। स्वर है अरिजीत सिंह की, धुन तैयार की है शारिब और तोशी ने, बोल है तुराज और अजीम शिराफी की।

श्रोताओं, अब सुनिए श्रेया घोषाल और सोनू निगम की स्वरों में ये गीत। फिल्म का नाम है सिंह साहब, रचना है कुमार की और संगीतबद्ध किया है आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, आप सुनिए श्रेया घोषाल और सोनू निगम की स्वरों में ये गीत। फिल्म का नाम है सिंह साहब, रचना है कुमार की और संगीतबद्ध किया है आनंद बख्शी ने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म बुलेट राजा से। आवाज़ें हैं वाजिद और श्रेया घोषाल की, संगीतकार है साजिद वाजिद और गीत है कौसर मुनीर की।

श्रोताओं आइए सुनते हैं एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्य रखते हैं उनके लिए आवेदन

श्रोताओं, आइए सुनते हैं क्रिश फिल्म का ये गीत। सुरों से सजाया है अलीशा चेनाई और जुबीन गर्ग ने, संगीत है दुलीप जीत गोगोई की और फिल्म और बोल है समीर अंजान की।

अब लीजिए सुनिए मनोज यादव का लिखा ये गीत, जिसे गाया है निखिल डिसोजा ने, संगीतबद्ध किया है चिरंतन भट्ट ने और फिल्म का नाम है बॉस।

श्रोताओं, अब पेश है वाजी और पलक मुच्छल के स्वरों में ये गीत। संगीत निर्देशक है चिरंतन भट्ट की और रचना की है मनोज यादव ने। फिल्म का नाम है जंजीर।

मद्रास कैफ़े इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुना रहे हैं, जिसे गाया है पापुन ने, धुन तैयार की है शांतनु मोइत्रा ने और गीत है अली हयात की।

श्रोताओं चलिए सुनते हैं शफकत अमानत अली और अर्पिता चक्रवर्ती की आवाज़ों में ये गीत। गीत है परासुन जोशी की, संगीत सलीम सुलेमान की है और फिल्म का नाम है सत्याग्रह।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 11 बजे हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1303वीं कड़ी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
3: आपने लिखा है, सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर

0: गया। सोचिए, जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
1: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
1: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
1: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
1: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
1: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं, बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
1: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
1: जी।
0: नए साल का अवसर था, इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
1: सभी मगन थे, लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
1: जी।
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है, लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
1: जी।
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
1: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में यह भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
1: जी।
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
1: जी।
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया
1: जी,
0: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी।
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी।
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
1: जी।
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है।

0: कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जानें।
1: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है और वो ये कि
0: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
1: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
0: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
1: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए,
0: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जामा

सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सत श्री अकाल चाचा।
3: सत श्री अकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का

0: अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
1: बंदूक भी चलाते हो?
0: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
1: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
0: हाँ।
1: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
0: जरूर पुत्र, जरूर। लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
1: जी चाचा।
2: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
3: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
2: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
3: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
2: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
3: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर, ये तो हमारा काम है।
4: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
4: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश दे। हाँ, पॉलिश दे। अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
2: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
4: एक मिनट मान सिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने ये घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
3: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।

0: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
1: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
0: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
1: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखो का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखो अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
0: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं, जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं, अब बिल्कुल निशाने पर आ गया। अरे, ये तो ऊपर से निकल गया, मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
1: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
0: अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
3: ओए कायरो, ओए भागते कहां हो? मुझे तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
1: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
0: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखो का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
3: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखो, 102।

0: उसे को 102, मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
1: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए।
2: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
1: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेख हों, परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1383वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म इंसाफ द जस्टिस से, जिसे लिखा है समीर ने, आवाज़ें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की, और संगीत से सजाया है निखिल विनय ने।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्म मैं हूं ना फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अभिजीत और श्रेया घोषाल ने। संगीत है अनु मलिक की और गीत जावेद अख्तर की है।

0: हो। अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, आप सुनते हैं मिक्का सिंह की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है अपना सपना मनी मनी। बोल है शाबिर अहमद की व धुन तैयार की है प्रीतम ने।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका के क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो सामुचिक योग्य रखते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायकों अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की यह चयन प्रतिक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। श्रोता, अब सुनिए अब लौट चले फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक ने, संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और रचना की है शमीर ने।

0: इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वे 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं तेलुगु कार्यक्रम।
1: మీడియం వేవ్ 438.6 మీటర్లు అనగా 684 కిలో హార్ట్స్ పై ఇది ఆకాశవాణి శ్రీ విజయపురం కేంద్రం.

0: इस एक्ट में ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिनसे HIV के साथ जी रहे लोग भेदभाव या बुरे बर्ताव से जुड़ी शिकायत को आसानी से दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए हर राज्य में कम से कम एक लोकपाल की नियुक्ति होगी। साथ ही साथ हर संस्थान जहां 100 से अधिक लोग काम करते हैं एक कंप्लेंट ऑफिसर, और हर स्वास्थ्य संस्थान जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं वहां भी एक कंप्लेंट ऑफिसर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ नफरत, भेदभाव या हिंसक व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 महीने से लेकर 2 साल तक जेल या 1,00,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। साथ ही लोकपाल के ऑर्डर्स का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही की गोपनीयता में विच्छेद करने पर 1,00,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब बताइए, आपने HIV एंड AIDS एक्ट 2017 के बारे में ढंग से जाना क्या? अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर सही किया क्या?
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

0: श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता निपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई।

0: है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रही हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारा नंबर है 9474234000। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9474234000। इस नंबर पर हमें अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गीत के बोल लिख भेजें, ताकि हम आपको आपके मन पसंदीदा गीत आप तक पहुंचा सकें। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला पैगाम हमें आया है इंदौर, मध्य प्रदेश से, प्रिया सिंह, रेखा सिंह और राकेश सिंह का। ये सुनना चाहते हैं पार्टनर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगली पेशकश की हैं सीमा, शिवम, अनुज और सरिता ने सुल्तानपुर दिल्ली से। फिल्म का नाम है वांटेड।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

दोस्तों, अब सुनते हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म का ये गीत, जिसे पसंद किया है प्रतीक, साक्षी और आरती ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश से।

दोस्तों चलिए सुनते हैं हमारी अगली फरमाइश, जिसे भेजा है राकेश चौहान, गोपाल चौहान, रिंकू चौहान और रमाकांत चौहान ने बांसडी बलिया यूपी से। ये सुनना चाहते हैं बरसात फिल्म का ये गीत।

0: Wins a bronze medal in the 60 kilogram category, showcasing the nation's growing prowess in boxing. In the trap mixed team event, Niru, Danda and Kinan Chennai produced remarkable turnaround under pressure to clinch the gold medal. India moved up to the 7th in the medals tally with 10 gold, 21 silver and 28 bronze. Overall medal tally reaches 59. In men's cricket, West Indies were 15 for no loss in 2.3 overs against host India on the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger over 5 years. New Delhi Qatar review $10 billion to India. Accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब

0: खिताब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रूकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह के कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष, यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं, तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
4: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है, गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष

0: गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
1: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष के पांडुरंग दंडावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है देश के सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
1: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनूप आनंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
3: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
1: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
0: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया।

श्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अथवा 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जन सेवाओं को परसों तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर बिजली चमकने के साथ वर्षा होगी तथा हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने की आशंका बताई गई है। वहीं मछुआरों को कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये है मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा आरंभ होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ।
1: विविध भारती
2: FM 3 विजयपुरम
3: 100.9 आपका हमसफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

हेलो हेलो जी, हेलो, क्या हमारी बात आरती जी से हो रही है? हेलो, शायद आरती जी से हमारा कनेक्शन टूट गया है, तो श्रोताओं चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो हेलो डियर
1: हेलो,
0: फ्रेंड्स
1: हाय। हाँ
0: जी, मेरी बात रूपाली जी से हो रही है?
1: जी, बिल्कुल।
0: जी रूपाली जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए।
0: जी हम भी ठीक हैं। आप कहाँ से बोल रही हैं रूपाली जी?
1: मैं बनारस से बोल रही हूँ,
0: अरे आप तो बहुत खूबसूरत
1: यूपी।
0: जगह से बोल रही हैं मैडम। तो हमें कुछ बताइएगा बनारस के बारे में।
1: बनारस महादेव की नगरी है, घाटों
0: जी
1: का शहर है,
0: जी
1: और बाबा विश्वनाथ नाथ जी यहाँ पे प्रसिद्ध है बहुत।
0: जी
1: और यहाँ पे 80 घाट है पूरे, और
0: जी
1: बहुत फेमस है यहाँ पे दशाश्वमेध घाट में जो आरतियाँ होती हैं
0: जी
1: वो देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं।
0: जी
1: और यहाँ की कचौड़ी, जलेबी, ये सब तो बहुत फेमस है।
0: जी जी अच्छा जी। तो रूपाली जी, इस प्रोग्राम के ज़रिए आप कौन से गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अभी तो मेरा बहुत मन कर रहा है कॉकटेल का, यारियां सुनने का।
0: अच्छा चलिए रूपाली जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए सुनते हैं आपका पसंदीदा ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो
0: जी, मेरी बात बेबी गुप्ता जी से हो रही
1: जी। हाँ,
0: है?
1: मैं बेबी
0: जी
1: गुप्ता।
0: जी जी बेबी गुप्ता जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं हटबिल मान से बोल रही हूँ।
0: जी बेबी जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ जी, मैं छोटे बच्चों को।
0: अच्छा, तो आप एक शिक्षिका हैं, तो हमें बताइएगा बच्चों को पढ़ाना आपको कैसा लगता है?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन से ही शौक था बच्चों को, मतलब टीचर बनने के लिए। मेरे पापा भी टीचर्स हैं, इसीलिए मुझे भी शौक है टीचर बनने के लिए
0: जी, चलिए
1: जी।
0: तो बेबी जी, इस कार्यक्रम के जरिए आप कौन से गीत सुना चाहती हैं?
1: मैं दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज की महाराजी खो जाता है मजबूर
0: अच्छा, तो चलिए
1: जी।
0: सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड। हेलो
1: हेलो
0: जी, मेरी बात अनमोल जी से हो रही है? हेलो
1: हाँ, मैं आपकी
0: जी, मेरी बात अनमोल जी से हो रही है? जी, कहाँ से बोल रही हैं आप अनमोल जी?
1: बोल
0: जी, कैसी हैं आप?
1: रही।
0: जी, कुछ अपने बारे में बताइएगा, क्या करती हैं आप?
1: हेलो,
0: जी, हेलो
1: मैं
0: जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है जी, क्या करती हैं अनमोल जी आप? जी, अच्छा, तो आपको गीत कैसा लगता है? गीत गाती हैं आप?
1: मैं
0: अच्छा, तो इस कार्यक्रम में आप कौन से गीत सुनना चाहती हैं? कुछ गीत गुनगुना दीजिएगा हमारे लिए।
1: तो

0: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हाय। हाँ
0: जी, पूजा जी बोल रही हैं
1: जी,
0: जी। पूजा जी कैसी हैं आप? हेलो
1: हेलो।
0: जी, पूजा जी कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप ठीक हैं?
0: जी हम भी ठीक हैं। तो बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं बिहार में हूँ, जॉब करती हूँ,
0: अच्छा, क्या जॉब करती हैं आप पूजा जी?
1: एयरपोर्ट पे हूँ,
0: अच्छा
1: मेडिकल ऑफिसर हूँ।
0: अच्छा मेडिकल लाइन में है। चलिए, तो कौन से गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: वो गाना है ना, जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना।
0: अच्छा, तो चलिए सुनवाते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो,
0: जी, हमारी किससे बात हो रही है?
1: मैं प्रीति बोल रही हूँ।
0: जी प्रीति जी, नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक हूँ।
0: जी प्रीति जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं एक टीचर हूँ, बलिया में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश की।
0: जी तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं
1: यस मैम,
0: जी, कैसा लगता है आपको बच्चों को पढ़ाना?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: जी चलिए, तो इस कार्यक्रम के जरिए आप कौन से गीत सुनना चाहती हैं प्रीति जी?
1: मैं एक एनिमल मूवी का आधा तेरा इसके आधा मेरा सॉन्ग
0: अच्छा
1: सुनना चाहती हूँ।
0: जी, आपको आपका पसंदीदा गीत हम सुनवाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो मैडम, नमस्ते जी।
0: जी, नमस्ते। हमारी बात किससे हो रही है?
1: मेरा नाम प्रिया है, मैं मैडम रंगत से बोल रही हूँ।
0: जी प्रिया जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिया जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ मैडम, आप बताइए आप कैसी हैं।
0: हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो बताइएगा प्रिया जी, रंगत का मौसम कैसा है?
1: जी कभी धूप कभी बारिश मैडम।
0: जी, अच्छा। तो प्रिया जी, आप रेडियो सुनती हैं क्या?
1: जी जी सुन लेती हूँ मैडम, जब काम काज करते रहती हूँ तो सुन लेती हूँ।
0: चलिए तो बताइएगा प्रिया जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी मैम, आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ हम आपके है कौन फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आप कोई भी गाना सुना दीजिए उस फिल्म का।
0: जी, तो धन्यवाद प्रिया जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो चलिए
1: जी
0: हम,
1: मैडम,
0: जी
1: आपका भी
0: हाँ
1: धन्यवाद जो आपने हमें इस कार्यक्रम में शामिल किया।
0: जी, धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गीत।
1: जी

0: डियर फ्रेंड्स। हेलो
1: हेलो
0: जी, मेरी बात किससे हो रही है? हेलो
1: फातिमा बीवी से। ठीक
0: जी, कैसी हैं आप?
1: है, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी ठीक हैं। तो बताइएगा, आप रेडियो सुनती
1: जी सुनती है।
0: हैं? अच्छा, तो आप इस कार्यक्रम में कौन से गीत सुनना चाहती हैं फातिमा जी?
1: मेला फिल्म का कोई भी गाना चलेगा।
0: चलिए, हम आपका पसंदीदा गीत आपको सुनवाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।

0: अभी आप फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स सुन रहे थे।
1: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर,

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास संगीत कार्यक्रम यूं ही गाते रहो, जहां हर गीत अपने साथ यादों की एक नई कहानी लेकर आता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खुशनुमा नगमे, जिसे सुनते ही दिल में प्यार और खुशियां दोनों ही खिल उठते हैं। दोस्तों, फूल प्रकृति की वह खूबसूरत मुस्कान है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। फूलों की खूबसूरती मन को सुकून देती है, उनकी रंगत चेहरे पर मुस्कान ले आती है और उनकी नज़ाकत हमें ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास दिलाती है।

फूल सिर्फ खूबसूरती की पहचान नहीं बल्कि प्यार, दोस्ती, सम्मान और खुशियों का प्रतीक भी है। शायद इसलिए जब किसी को अपने दिल की बात कहनी होती है तो शब्दों के साथ अक्सर फूल भी दे दिए जाते हैं।

0: दोस्तों, फूल हमें एक खूबसूरत सीख भी नहीं। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और हमें अपनी मुस्कान और अपनी खूबसूरती दूसरों तक पहुंचाना चाहिए।
1: अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं!

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं निकोबारी कार्यक्रम से।
1: सिनलाम नएनजे रोकर हामंग एंगे रेताका लमकते एलंगी मीडियम वेव 438.6 मीटर 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अन्नी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।
2: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1-to-3-minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
1: Min katalon hi ing harap

जानकारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 21वीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program. This is your RJ Chetan. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए। जिस दिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, उस दिन आप जरूर सफल होने की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस मंत्र और इस सार से जुड़ी ये एक प्रेरक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक जंगल था जहां सुनहरे पंखों वाले बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। वह पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को खाती थी, यही उसका प्रिय भोजन था। एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी, तब उस चिड़िया की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था, जिसे लेकर वो जंगल से तेजी से गुजर रहा था। उसे इतनी जल्दबाजी में देख चिड़िया को हैरानी हुई। उस चिड़िया ने व्यक्ति से पूछा कि भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? किसी परेशानी में हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से ही मैं पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था। इन्हें मैंने इस लकड़ी के बॉक्स में भरा हुआ है। इन्हें गांव के बाजार में बेचने जा रहा हूँ। इसके बदले में मुझे एक सुनहरा पंख मिलेगा। जल्दी जा रहा हूँ ताकि बाजार बंद न हो जाए। ये सुनकर चिड़िया को ख्याल आया कि उस व्यक्ति को सुनहरे पंख चाहिए और उसे खाने के लिए तने के कीड़े। एक दूसरे की आवश्यकता को पूरे करने के लिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चिड़िया ने सोचा कि क्यों न वो इसे खुद का एक पंख देकर ये बॉक्स ले ले। ऐसे में उसे भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा कि ये बॉक्स वो उसे दे दे, इसके बदले में वो उसे एक सुनहरा पंख दे देगा। वह व्यक्ति भी इस बात पर तैयार हो गया, क्योंकि उसे बाजार तक नहीं जाना पड़ा। चिड़िया ने उसे अपना एक पंख दिया और बॉक्स ले लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने उस आदमी को रोज सुनहरा पंख देने का वादा किया और बदले में कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया। इससे चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोजाना कीड़े मिलने लगे। वह रोज अपना एक पंख तोड़ती और कीड़े लेकर अपनी भूख मिटा लेती। लेकिन धीरे धीरे उसे उड़ने में परेशानी होने लगी, क्योंकि उसके पंख खत्म होने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके सभी पंख खत्म हो गए। वे उड़ने में भी असमर्थ हो गई। पंख न मिलने पर उस आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया। चिड़िया लाचार हो गई थी। वह खाना तलाशने में भी न जा सकती थी। कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई। तो दोस्तों, आपको ये मैसेज तो समझ में आया ही होगा। क्या सफलता का शॉर्टकट भी होता है? कैसे? होता तो है, लेकिन फिल्मों में। इसी कारण आज हर युवा बिना मेहनत करे रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है, जिस कारण उसको सामान्य कार्य करने का कोई रुचि नहीं रहता। ज्यादा फिल्म देखने के बाद हम जिंदगी में कुछ इन चीजों की उम्मीद करते हैं। अमीर लड़की को हमेशा प्यार हो जाएगा, जो कि इकलौती होगी, पढ़ी लिखी होगी, परी की तरह सुंदर भी होगी, तो शादी के बाद में अरबपति बन जाऊंगा, कोई रियलिटी शो जीतकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। दो वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर न केवल दोस्तों में पॉपुलर होने के सपने, बल्कि ये उम्मीद करते हैं कुछ हफ्तों में मिलियन व्यूज आ जाएंगे। 500 रुपए शेयर बाजार में निवेश करके ख्वाब देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। किसी ने शेयर मार्केट के क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। पता चला वो क्लासेस चलाने वाले सर खुद लॉस में है और वो अपना लॉस कवर करने के लिए क्लासेस चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफी दिखावा चल रहा है। उनका लक्ष्य आपको आकर्षित करके कोर्स या कुछ प्रोडक्ट को बेचना है। ऐसे ही विचार आज के युवाओं को मानसिक तौर पे बर्बाद कर

रहे हैं। आमतौर पर सफलता को पैसे से या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपका नाम है, तो आपको सफल व्यक्ति मान लिया जाता है। लेकिन यह सफलता की परिभाषा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने बदलते हैं। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है, एक विद्यार्थी की सफलता उसके पास होने में है, एक गरीब की सफलता खुद की भूख मिटाने में है, एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। एक बार एक लड़का गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादी जी के पास गांव आया। एक दिन जब वह अपने दादी जी के साथ बिताता था, तो उसने अपने दादी जी से एक सवाल पूछा कि सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस क्या है। इस पर दादी जी ने उसे पास ही की एक नर्सरी में जाकर वहां से दो पौधे खरीद लाने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर और एक पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। उस लड़के ने ऐसा ही किया। बाद में दादी जी ने अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन पौधों में से सबसे अधिक सफल कौन होगा? लड़के ने जवाब दिया कि घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा, जबकि बाहर जो पौधा लगाया गया है उसको काफी चीजों से खतरा है। दादी जी अपने पोतों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद लड़का वापस शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह लड़का वापस दादी जी से मिलने आया अपने गांव, तो उसने अपने दादी जी से पौधे के बारे में पूछा। दादी जी ने उसे घर के अंदर लगाया गया पौधा दिखाया। वो पौधा अब एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका था। लड़के ने अपने दादी जी के ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा, वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादी जी उसे बाहर लेकर आई तो लड़का हैरान हो गया। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसने दादी जी से पूछा कि ये कैसे संभव है कि बाहर वाला पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और अंदर वाला पौधा उतना विकसित नहीं हो पाया, जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक खतरों से सुरक्षित था। दादी जी ने उसे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल होती है। सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस यही है। कहानी का तर्क यही है कि मुश्किलों का सामना करने वाले को ही सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है, लहरों से डरकर नदियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। With this wonderful motivational story, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए, बहारों की शाम। तमिल में आप एक ही संगीतकार के कुछ गाने सुन पाएंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम। संध्या 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर वी दामोदर के साथ की गई बातचीत का विषय रहेगा अदरक की जैविक खेती। संध्या 6:30 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुनिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मौसम की जानकारी, चलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं सुनिए 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर कार्यक्रम सुनिए, गीतों भरी कहानी। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार रात 8:30 पर। रात 10 बजे FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम, और रात 10 बजे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा, प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम प्रातः 5:55 पर, जिसमें जानकारी का विषय रहेगा पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से। 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम 6:15 पर, जो केंद्रित होगा माँ बाप शीर्षक पर। सवेरे 6:30 पर सुनिए रामचरित मानस गान। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 6:50 पर। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा, देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा SMS माय चॉइस कल सुबह 10 बजे। दिन के 11 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत, दिन के 11:30 पर। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप अनूप जलोटा और तलत अजीज को सुन पाएंगे। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद FM 100.9 MHz पर कार्यक्रम सुनिए नॉन स्टॉप म्यूजिक। दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप पिरका गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनिए 4:30 पर। 4:40 पर सुनिए कार्यक्रमों का विवरण। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम 4:45 पर। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए से। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की।

आइए अब सुनते हैं जानवर फिल्म का एक गीत, अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों में। आनंद मिलिंद का संगीत है, समीर की रचना है।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं राजकुमार फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल आनंद बख्शी के हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानुली निलयम वणकम तमिल अमुदम वणकम नेर्गले

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बंगला कार्यक्रम।

0: শ্রোতা বন্ধুরা, আজকের বাংলা অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। সঙ্গে ছিলাম আপনাদের প্রিয় বন্ধু সুজাতা। ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, শুভরাত্রি।
1: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय स्वयं को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, उसकी परिस्थितियाँ अलग होती है और उसकी मंजिल भी अलग होती है। इसलिए अपनी गति से आगे बढ़ते रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो साथियों, हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें हर दिन अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इन्हीं विचारों के साथ चलिए अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है, सूडोमोनास के बीजोपचार किस कारक से होने वाले मृदा जनित रोगों से बचाव प्रदान करता है? प्रश्न मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। सूडोमोनास से बीज उपचार किस कारक से होने वाले मृदा जनित रोगों से बचाव प्रदान करता है? आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए। कार्यक्रम के दौरान हम इसका उत्तर आपको अवश्य बताएंगे। साथियों, अच्छी और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे बीजों में अंकुरण क्षमता अधिक होती है, जिससे खेत में पौधों की संख्या अधिक रहती है और फसल का विकास भी बेहतर होता है। प्रमाणित और रोग मुक्त बीजों से स्वस्थ, मजबूत तथा गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार होते हैं। इससे फसल में रोग और कीटों का प्रकोप कम होने की संभावना रहती है तथा किसान को बेहतर उत्पादन प्राप्त होते हैं। अच्छे बीजों के उपयोग से समय, मेहनत और लागत का भी उचित उपयोग होता है। किसानों को हमेशा प्रमाणित, शुद्ध, रोग मुक्त और स्थानीय जलवायु एवं मिट्टी के अनुकूल बीजों का चयन करना चाहिए। बुवाई से पहले बीजों की गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता की जांच करनी भी आवश्यक है। सही समय पर सही बीज का उपयोग, उचित बुवाई विधि और फसल की उचित देखभाल मिलकर अच्छी पैदावार का आधार बनते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अच्छे बीज केवल अच्छी फसल की शुरुआत नहीं है, बल्कि किसान की बेहतर पैदावार, अच्छी आय और सफल कृषि का मजबूत आधार है। तो साथियों, अभी आपने अपने अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज की उपयोगिता के बारे में जाना। अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आपको सुनवा देते हैं आज की बातचीत, जिसका विषय है अदरक की जैविक खेती। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वी दामोदरन।

0: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अदरक का जहाँ तक सवाल है तो हमारे द्वीपों में बहुत सारे किसान भाई करते हैं और मेरे ख्याल से अभी मौसम भी है, तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, इसकी खेती के लिए उपयुक्त है?
1: जी हाँ, ऐसा देखा जाएगा तो हमारा द्वीप में नारियल और सुपारी का बागन बहुत सारा मात्रा में किया जाता है,
0: जी
1: और अदरक जो इंटरक्रॉप का माध्यम में कल्टीवेशन करने के लिए नारियल या सुपारी बगीचा के लिए एक बहुत ही अच्छा फायदेमंद फसल है, जो किसान भाई करते भी है, इससे बहुत फायदा भी है।
0: अच्छा
1: और इस द्वीपों में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन यानी जैविक कृषि करने के लिए अदरक एक बहुत ही लाभदायक फसल
0: अच्छा तो आपने कहा कि नारियल और सुपारी के बागीचे में इसे आसानी से किया जा
1: है।
0: सकता है। नारियल और सुपारी के बगीचे अक्सर थोड़ा सा ढलान वाली जगह पर होती है,
1: हाँ
0: तो अदरक की बुआई वगैरह जो करते हैं उस समय ध्यान रखना होगा, अन्यथा मिट्टी कटने का डर रहेगा।
1: जी हाँ, इसके लिए किसान भाई एक्सट्रीम स्लोपी लैंड को अवॉइड करना
0: अच्छा,
1: चाहिए,
0: जहाँ बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: ढाल हो।
1: ज़्यादा स्लोप है उसको अवॉइड करना है। इन केस अगर उसमें भी कल्टीवेशन करता है तो कंटूर मेथडिंग में जो टेरेस बनाना है वो बना के अदरक उगा सकते हैं। मॉडरेट स्लोप में अदरक बहुत अच्छा तरह हो सकता है, इवन जो जगह स्लोप बहुत कम है उस जगह एकदम बढ़िया होता है अदरक के लिए।
0: अच्छा
1: तो किसान भाई जब जमीन तैयारी करेगा ये स्लोप का थोड़ा ध्यान रखना है।
0: अच्छा और मेरे ख्याल से जो निचली ज़मीन है वहाँ पर नहीं करते हैं किसान।
1: हाँ, जिस जमीन में अगर पानी रुकने का प्रॉब्लम होता है, वाटर स्टैग्नेशन, वो जगह को अवॉइड करना चाहिए। वाटर स्टैग्नेशन होगा तो अदरक में एक बीमारी होता है सॉफ्ट रॉट, उसका खतरा पड़ जाता है।
0: अच्छा
1: इसीलिए किसान भाई जमीन सेलेक्ट करने का टाइम प्रॉपर ध्यान में रख के उसको सेलेक्ट करना
0: बिल्कुल,
1: चाहिए,
0: यानी ऐसे जगह ना हो जहाँ पर पानी रुकता
1: पानी
0: हो और
1: रुकता।
0: आपने

0: जैसा कहा कि ढाल हो तो ठीक
1: हाँ
0: रहेगा, बहुत ज़्यादा ढाल ना हो
1: बहुत
0: तो
1: ज्यादा नहीं होना।
0: अच्छी बात होगी। तो डॉक्टर साहब, हमारे इन द्वीपों में अगर अदरक की जैविक कृषि करनी है तो कुछ ऐसे वैरायटीज़ होंगी जिसको कि किसान भाइयों को सेलेक्ट करना होगा ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके।
1: हाँ, इस द्वीपों के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ने बहुत वैरायटीज़ को एवाल्यूएट किया है। इसमें हम लोग पाया गया है कि जोरात करके एक वैरायटी है जो नॉर्थ ईस्ट का, वो बहुत ही फायदावर है। इसके अलावा मारन और नदिया दो वैरायटी है, ये भी उचित है इस द्वीपों के लिए।
0: अच्छा, तो ये जो वैरायटीज़ हैं इनका सिलेक्शन करने के बाद जो बुआई होती है, जो प्लांटिंग होती है, तो उसके लिए पहले से जो उसका जो कंद होता है अदरक का जो, तो उसको किस तरह से तैयार करें, किस तरह से प्लांट करें, क्या सलाह देंगे आप?
1: देखिए, किसान भाई अगर अदरक खेती जैविक रूप से करना चाहता है तो प्लांटिंग मटेरियल जब खरीदेंगे इससे ही सावधानी रखना चाहिए कि जो प्लांटिंग मटेरियल किसान भाई इस्तेमाल करेंगे अपना खेत में गाड़ने के लिए, उसको उस किसान से लेना है जो ऑर्गेनिक वे में कल्टीवेट किया है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अपना लोकल वैरायटी भी कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके बाद विशेष रूप से किसान भाई को ये ध्यान देना है, प्लांटिंग टाइम जो टाइम गाड़ेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
0: अच्छा,
1: अगर डिले हो जाता है तो यील्ड घटेगा, तो प्रॉपर टाइमिंग में प्लांटिंग करना है। इसके लिए किसान भाई कम से कम अदरक सीड मटेरियल लेके आके अपना घर में स्टोर करके रखे हैं तो तुरंत ही ज़मीन तैयारी कर देना चाहिए। ज़मीन में जो खुदाई जो मिट्टी का काम होता है वो होने का बाद किसान भाई दो तरीका से गाड़ सकते हैं। अगर फ्लैट लैंड है जो जगह पानी नहीं रुकता है वो जगह में बेड बना के गाड़ सकते हैं, अगर स्लोपी लैंड है तो रिजस एंड फरो मेथड में गाड़ सकते हैं। तो बेड अगर बनाएंगे किसान भाई तो बेड का चौड़ाई 1 मीटर रखना चाहिए
0: जी
1: और लेंथ आके 3 मीटर या जो हिसाब से उनको काम कर सकते हैं वो हिसाब से बेड बना सकते हैं। बेड हमेशा जो जमीन फ्लैट लैंड है उसमें ऊंचा बेड बनाना चाहिए, यानी कि एक 15 सेंटीमीटर जमीन से
0: ऊंचा
1: ऊपर
0: होना
1: हो,
0: चाहिए।
1: ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार का अगर बेड बनाएंगे तो प्रति हेक्टेयर में 2,000 बेड बना सकते हैं। तो जब गाड़ेंगे अदरक को, जो सीड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइजोम बिट, यानी कि एक एक राइजोम का एक मात्रा होता है गाड़ने के
0: एक एक
1: लिए
0: टुकड़ा जो होता
1: टुकड़ा
0: है।
1: के, तो वो टुकड़ा का वजन 15 से 20 ग्राम होना चाहिए, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार का टुकड़ा बना के रखना। तो अगर प्रति हेक्टेयर गाड़ना है तो कम से कम 1,500 से 2,000 किलो का सीड मटेरियल लगेगा किसान भाई को। तो अगर जैविक मेथड में गाड़ेंगे किसान भाई क्या करना है, ये राइजोम बिट को जब गाड़ेंगे तो दूरी भी देखना चाहिए किसमें उसको किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। तो एक रो से दूसरा रो का दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए।
0: एक कतार से दूसरे कतार
1: हाँ,
0: के बीच में,
1: और एक प्लांट से प्लांट,
0: पौधे
1: एक
0: से
1: पौधे से
0: पौधे।
1: पौधे कम से कम 15 सेंटीमीटर का दूरी रहना चाहिए।
0: अच्छा,
1: इस प्रकार का वो प्लांटिंग करेंगे। जब प्लांटिंग करेंगे तो एक एक जगह में एक छोटा सा गड्ढा खुरपी से बनाना चाहिए। उस गड्ढे में गोबर खाद और ट्राइकोडर्मा मिक्स करके वो अप्लाई करना चाहिए। प्रति पिट के लिए 20 ग्राम अप्लाई करने से बस से
0: 20 ग्राम।
1: 20 ग्राम। तो फिर एक टुकड़ा अदरक को उसमें रख के प्लांटिंग कर देना चाहिए।
0: अच्छा,
1: जब प्लांटिंग हो जाएगा और एक काम किसान भाई ध्यान से करना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं मल्चिंग, यानी कि कचड़ा वगैरह डाक देना है। अगर धूप काल में गाड़ेंगे किसान भाई, इसका प्लांटिंग टाइम होता है मार्च अप्रैल, यानी कि तब आप गाड़ देंगे तो अप्रैल में लास्ट तक बारिश शुरू होगा तो ये अदरक निकलेगा। तो प्लांटिंग टाइम डिले नहीं करना चाहिए,
0: अच्छा,
1: प्लांटिंग में सही टाइम में करके, ये मल्चिंग मेन ऑपरेशन है। जितना मल्चिंग करेंगे उतना पैदावार अच्छा होगा।
0: अगर जो किसान भाई अगर कोई लेट है तो अभी भी कर सकते हैं अगर
1: कर
0: चाहें,
1: सकते हैं, यील्ड में थोड़ा
0: थोड़ा सा
1: फर्क
0: फर्क
1: आएगा।
0: आएगा।
1: हाँ
0: अच्छा, ठीक है। तो ये मल्चिंग करने के बाद ऐसे छोड़ देना चाहिए।
1: या मल्चिंग करने का बाद छोड़ देंगे तो 1 महीना जब बारिश होगा अदरक
0: अंकुरण निकलेगा इसका।
1: कुरक निकलेगा, उसके बाद किसान भाई उसमें ध्यान देते रहना चाहिए। खरपतवार, खरपतवार को समय पे निकालना चाहिए। ये पहला खरपतवार जब निकाल

0: लेंगे 40 दिन का अंतर में, जब फसल निकलने लगेगा, फर्स्ट 40 डेज में एक बार खरपतवार निकालना चाहिए। फिर उसके बाद गोबर खाद है तो वो थोड़ा डाल के मिट्टी चढ़ाना, जिसे हम अर्थिंग अप बोलते हैं, मिट्टी चढ़ा के फिर एक बार मल्चिंग करना चाहिए। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर मल्चिंग करेगा किसान भाई, प्रति हेक्टेयर 10 से 12 टन का मल्च मटेरियल यूज़ करना है। इसमें आप पत्ती, जो भी हरा पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बार जब मल्चिंग करेंगे 45 डेज में, उस टाइम 5 या 6 टन का प्रति हेक्टेयर का हिसाब से मल्च मटेरियल यूज़ करें। उसके बाद सेकेंड और एक मल्चिंग देना पड़ेगा, ये करीब 3 महीने का बाद, पौधा निकलने का 3 महीने का बाद एक बार फिर खरपतवार निकालना है। अगर आपके पास गोबर खाद है तो फिर से दे के मिट्टी चढ़ाइए, मिट्टी चढ़ाने के बाद मल्चिंग करना
1: अच्छा, तो
0: चाहिए।
1: ये जो मल्चिंग या जो बिछावन बिछाते हैं तो इससे क्या फायदा होता है?
0: इससे दो प्रकार का फायदा होता है। एक तो वो क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करता है नेचुरली, फिर ये जो है डीकम्पोज हो जाता है
1: सड़ के उसी में
0: सड़
1: मिलता
0: के,
1: है।
0: और वीड ग्रोथ को सप्रेस करता है।
1: अच्छा,
0: तो ये डीकम्पोज होने से ये न्यूट्रिएंट ऐड करता है सॉइल में।
1: और जैसे आपने कहा जो खरपतवार है वो भी कम निकलते हैं चूंकि इसके
0: हाँ
1: ऊपर ये बिछावन रहता है। पहली बार जब मिट्टी चढ़ाएं तो गोबर खाद वगैरह दे दें, उसके बाद भी फिर खाद देने की आवश्यकता होती है इसमें?
0: 90 डेज में एक
1: नब्बे
0: बार
1: दिन में एक
0: अगर
1: बार
0: है
1: और
0: तो देने से अच्छा होता
1: अच्छी
0: है
1: बात
0: फसल।
1: होती है। तो इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ देखा गया है यहाँ
0: इस
1: पर?
0: दीपों में देखा जाएगा तो अधिकतर प्रॉब्लम नहीं है। अदरक में एक स्टेम बोरर होता है, वो उसका इंसिडेंस का हमेशा जुलाई अक्टूबर में होता है। तो किसान भाई देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि वो स्टेम को बोर करके उसको ये करती है,
1: तना में छेद करता है।
0: छेद करती है। अगर ये अगर नोटिस करता है किसान भाई, तो जैविक कृषि अपनाने से नीम तेल को स्प्रे करने से बस से
1: कंट्रोल
0: इसका
1: हो सकता
0: कंट्रोल
1: है।
0: हो जाएगा।
1: अच्छा, तो इस तरह से जब अदरक की खेती करते हैं किसान भाई, तो कितने दिनों में ये फसल निकालने के लायक हो जाती है? इसका ड्यूरेशन कितना होता है?
0: ड्यूरेशन, अगर अदरक को दो प्रकार का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वेजिटेबल जिंजर बोलते हैं, इसको अगर आप यूज़ करना है तो 6 महीना से हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये जिंजर को ज़्यादा दिन आप
1: रख नहीं
0: रख नहीं
1: सकते।
0: सकते हैं। या तो ड्राई जिंजर बनाएंगे, या तो उसको अदरक को फिर गाड़ना, सीड मटेरियल इस्तेमाल करना है तो 8 से 9 महीना का बाद ही हार्वेस्ट करना है।
1: जब पौधे सूखने लग जाएं
0: हाँ,
1: उसके
0: सूखने
1: बाद।
0: लगता है तो ये आपको पोस्ट रेनी सीजन में ही इसका हार्वेस्टिंग आएगा।
1: जब
0: यानी
1: बारिश रुक
0: कि
1: जाती
0: हाँ,
1: है।
0: जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में अगर किसान भाई गाड़ते हैं अदरक का फसल, जनवरी फरवरी में निकाल सकते हैं।
1: अच्छा, अगर अब जैसे मैंने कहा कि लेट हो गया अभी गाड़ते हैं तो फिर वो
0: हाँ, वो
1: अप्रैल
0: हिसाब
1: अप्रैल
0: अप्रैल हो
1: हो
0: सकता है।
1: सकता है। चलिए, तो कुल उत्पादन कितना, यहाँ का प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्षमता यहाँ कितना देखा है आप लोगों ने?
0: यहाँ अगर नारियल बागन में अदरक का फसल करते हैं तो एवरेज यील्ड 10 से 15 टन का होता है।
1: अच्छा,
0: यदि किसान भाई बहुत अच्छा मोनोक्रॉपिंग या बहुत अच्छा प्लेस में गाड़ेंगे तो 25 टन तक भी निकाल सकते हैं,
1: मिल सकता
0: मिल
1: है
0: सकते हैं।
1: अदरक में। डॉक्टर साहब, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग या अदरक को निकालने के बाद उनका संरक्षण भी एक बहुत अहम बात होती है, तो वो
0: हाँ,
1: भी थोड़ा संक्षेप में बता दें कि।
0: ये चीज़ तो किसान भाई ध्यान देना चाहिए। जब अदरक मार्केट करते हैं, मार्केट करने का बाद उनको अगर सीड मटेरियल में प्रिजर्व करना है तो उसको ध्यान से एक गड्ढा बना के उसमें स्टोर करना चाहिए। या यदि अगर रूम में स्टोर करेंगे तो रूम अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, एरेशन होना चाहिए, उस तरह जगह में यूज़ करना है। पिट मेथड में अगर किसान भाई स्टोर करेंगे, बड़ा गड्ढा खोद के उसमें गड्ढा का चारों तरफ गोबर खाद से लीप देना, गोबर से।
1: अच्छा,
0: उसके बाद अदरक जब वो पिट में स्टोर करेंगे, देखना चाहिए किसान भाई 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का एक लेयर अदरक डाल के उसके बाद उसके ऊपर सैंड या तो ये कायर डस्ट,
1: मतलब बालू या
0: बालू
1: जो
0: या तो
1: सॉडस्ट जो
0: सार
1: बोलते हैं।
0: डस्ट को डालना चाहिए एक लेयर। इस प्रकार अल्टरनेट लेयर बना के गड्ढे में रख सकते हैं। जब गड्ढा भर जाएगा तो ऊपर देखना चाहिए, कुछ वुडन प्लैंक्स या तो पत्ती वगैरह से ढकना है। विशेष रूप से किसान भाई ये ध्यान देना चाहिए, वो गड्ढा में पानी
1: जाए,
0: नहीं जाना
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: एरेशन फुल होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: यदि अगर किसान भाई इसके अलावा ड्राइड जिंजर में जाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं।

0: उसके लिए अदरक को अच्छा से धोना चाहिए, वॉश करके उसका जो सॉइल वगैरह है उसको
1: मिट्टी वगैरह हटा देना चाहिए।
0: रिमूव करना चाहिए। उसके बाद एक बम्बू या तो शार्प वुडन थिंग्स रख के उसको पीलिंग बोलते हैं, छिलका
1: छिलका
0: निकालना,
1: निकालना। हाँ
0: छिलका निकाल के सन ड्राइंग करना, धूप में सुखाना, करीब एक हफ्ता तक सुखाने से ये ड्राई जिंजर बन जाएगा। ड्राई जिंजर बनाएंगे तो किसान रिकवरी कम होता है, कम से कम 100 किलो अगर फ्रेश जिंजर आप सुखाएंगे तो 25 किलो ड्राई जिंजर मिलेगा। इसको आप बहुत दिन रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपकी बातों से साफ़ है कि अगर किसान भाई बहुत ध्यान लगाकर वैज्ञानिक तरीके से अदरक की खेती करें, जैविक कृषि करें, तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी अच्छा
0: मुनाफा
1: मिल
0: भी।
1: सकता है। तो डॉक्टर दामोदरन आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी बातें आपसे हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: ड्राई जिंजर बनाएंगे तो किसान रिकवरी कम होता है, कम से कम 100 किलो अगर फ्रेश जिंजर आप सुखाएंगे तो 25 किलो ड्राई जिंजर मिलेगा। इसको आप बहुत दिन रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आपकी बातों से साफ है कि अगर किसान भाई बहुत ध्यान लगाकर वैज्ञानिक तरीके से अदरक की खेती करें, जैविक कृषि करें, तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी अच्छा
0: मुनाफा
1: मिल
0: भी
1: सकता
0: अच्छा।
1: है। तो डॉक्टर दामोदरन आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी सारी बातें आपसे हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: साथियों, अभी आपने डॉक्टर वी दामोदरन से की गई ये बातचीत सुनी, जिसका विषय था अदरक की जैविक खेती।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: अब आइए कार्यक्रम के माहौल को बना देते हैं थोड़ा सा रंगीन इस प्यारे से गीत के जरिए।

0: अभी आपने साथियों ये गीत सुना और हमें लगता है कि इस गीत को आपने जरूर पसंद किया होगा। और अब साथियों हम आपको दे देते हैं ये छोटी सी जानकारी जिसका विषय है टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें टमाटर में लगने वाले एक रोग बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणु मुरझान के संदर्भ में। जी हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो टमाटर के उत्पादन को काफी प्रभावित करती है। टमाटर की खेती हर एक किसान भाई करते हैं और इसकी बाजार में अच्छी मांग भी रहती है। टमाटर भोजन को न केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि इसमें बहुत से विटामिन भी रहते हैं, जैसे विटामिन बी, सी तथा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। हमारे किसान भाइयों को टमाटर की अधिक पैदावार लेने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख है कीट एवं बीमारियां। जहां तक बीमारियों का प्रश्न है, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया कि एक रोग जिसे हम बैक्टीरियल विल्ट कहते हैं काफी भयंकर रूप से खेतों में लगता है। ये बीमारी हमारे इन द्वीपों के हर भाग में, जहां जहां टमाटर की खेती होती है वहां पाई जाती है। इसके कुछ एक लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपके खेत में बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी लगी है। प्रमुख लक्षण है जब पौधा नर्सरी में हो या जब पौधे खेत में लगते हैं तो पौध लगाने के 10 से 12 दिनों में ही पौधा मुरझा जाता है और सूख जाता है, या कभी कभी जब पौधे फल लगने लायक हो जाते हैं या जब पौधों में फल लगता है उस समय ये बीमारी आती है तो पौधा सूखकर मर जाता है। अगर सुबह सुबह हम इन पौधों को देखें तो ये बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देंगे, परंतु जैसे जैसे ही दिन चढ़ने लगता है या धूप तेज होती है तो ये पौधे मुरझाने लग जाते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन तक चलती है और अंत में पौधा मर जाता है। ऐसे में अक्सर किसान भाइयों को लगता है कि शायद पौधा बिना पानी के मर गया, यानी पानी की कमी से पौधे की मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती क्योंकि ऐसे पौधों को यदि आप पानी दें व सिंचाई करें तब भी ऐसे पौधे ठीक नहीं हो पाते। इस तरह से जो पौधे मर जाते हैं उन पौधों को उखाड़कर इनकी जड़ों को एक गिलास जिसमें साफ पानी है उसमें रख दें तो 4 से 5 मिनट बाद आप पाएंगे कि गिलास में जो पानी है वो बिल्कुल हल्का दूधिया रंग का हो जाता है। इससे पता चल जाएगा कि आपके पौधों में बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी लगी थी। क्योंकि ये रोग भूमि में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है, इसलिए पूरी तरह से भूमि को उपचारित करना तो संभव नहीं होता है। हाँ, नर्सरी के लिए हम भूमि को जरूर उपचारित कर सकते हैं। जीवाणु मुरझान यानी बैक्टीरियल विल्ट की बीमारी टमाटर, बैंगन, अदरक, मिर्च, मूंगफली, गेंदा, कॉस्मोस आदि बहुत सारे पौधों में लगती है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को इससे काफी सतर्क रहना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए फसल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। 2-3 साल का

0: फसल चक्र अपनाएं तो इससे कुछ फायदा होगा। अगर आपके खेत में टमाटर में ऐसी बीमारी लग जाती है तो अगली बार उसी खेत में टमाटर को ना लें। पौध लगने से पहले उर्वरकों के साथ ब्लीचिंग पाउडर 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। कभी रोगी खेत से निरोगी खेत में सिंचाई का पानी न जाने दें। एक दो पौधों को रोगी देखने पर उन्हें तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। गर्मियों में खेत की जुताई भी इस बीमारी से निजात पाने के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इन सब के अलावा सबसे कारगर व सरल तरीका है रोग रोधी किस्मों को अपनाना। अगर आप टमाटर की ऐसी किस्मों की खेती करेंगे जिसमें बैक्टीरियल विल्ट की प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसे में आप इस रोग से कुछ हद तक बच सकते हैं और टमाटर की सफल खेती कर सकते हैं।
1: टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट। साथियों, अभी इस विषय पर आपने छोटी सी जानकारी हासिल की। अब वक्त हो चला है आज आपसे पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर देने का। हमने आपसे पूछा था, सूडोमोनास से बीज उपचार किस कारक के होने वाले मृदा जनित रोगों से बचाव प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सूडोमोनास से बीज उपचार जीवाणुओं से होने वाले मृदा जनित रोगों से बचाव प्रदान करता है। अब आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
3: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इसी के साथ आज के हमारी कृषि जगत कार्यक्रम का समय अब यहीं पर पूरा होता है। कल शाम 6 बजे हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी लेकर। और अब जोया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष श्रृंखला में तरन्नुम मोहम्मद का अभिवादन स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। इसके महत्व को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई अवसरों पर अपने विचार साझा किए हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के शब्दों में पीएम मुद्रा योजना का महत्व।
2: पूर्ति कर रही है। ये आवश्यकता है बैंक गारंटी। कोई भी नौजवान अपने दम पर जैसे ही कुछ करना चाहता है, उसके सामने पहला सवाल यही होता है कि पैसे कहां से आएंगे। मुद्रा योजना के तहत ये गारंटी सरकार

0: एक ऐसी पहल जिसने छोटे कारोबार, स्वरोजगार और उद्यमिता के सपने देखने वाले लोगों के लिए वित्तीय सहायता का रास्ता आसान किया है। किसी के लिए छोटी सी दुकान उसके परिवार की आजीविका का सहारा है, तो किसी के लिए हुनर को कारोबार में बदलने का माध्यम।
1: वो लोग जिनके पास हुनर है, मेहनत है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी नहीं। ऐसे ही मेहनतकश लोगों को आर्थिक ताकत देने के लिए सरकार ने शुरू की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर हमने बात की एक लाभार्थी से। उन्होंने बताया कि किस तरह इस योजना से मिली आर्थिक मदद ने उन्हें अपना कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद की। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी उनका अनुभव।
2: नमस्कार, मैं सलमा मोहम्मद, मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक ब्यूटिशियन हूँ। मेरा सलोन अब्रिडिन बाजार और बम्बू फ्लैट में है। मुद्रा योजना के तहत मुझे अपने पार्लर का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिली। इससे मैंने जरूरी सामान और उपकरण खरीदे और अपना काम शुरू किया। आज इस पार्लर से मुझे रोजगार और आमदनी का अच्छा जरिया मिला है। साथ ही मैंने स्टाफ भी रखा है जिससे उन्हें भी रोजगार मिला है। मेरे लिए मुद्रा योजना अपने सपने को साकार करने का और दूसरे को रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी है।
0: ऐसे ही छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ाने में मुद्रा योजना किस तरह मदद करती है, इसके तहत कौन पात्र है, ऋण की विभिन्न श्रेणियां क्या है और लाभार्थी इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी SBI के मुख्य प्रबंधक श्री PK उमर फारूक जी। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू मैम।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, इसे शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है।
3: मैम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए जो लोन दिया जाता है उस स्कीम का नाम दिया हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
0: जी।
3: ये स्टार्ट हुआ था आपका 8 अप्रैल 2015 में
0: जी।
3: और इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग जो छोटे व्यापारी हैं, जो MSME जिसको हम लोग बोलते हैं, जो उद्यमी हैं, उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस चलना हो तो उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो वो सपोर्ट जो है, पहले ऐसा कोई स्कीम नहीं था जिससे जो छोटा उद्यमी बैंक के साथ जुड़ सके या फिर क्रेडिट अवेल कर सके, तो उसी के लिए स्कीम को लाया गया
0: जी।
3: और इसमें हमारे जो द्वीपों में भी ये स्कीम जो है वो जब स्टार्ट हुआ था 2015 तब से स्टार्ट हुआ।
0: जब हम छोटे कारोबारी और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात करें तो जाहिर है कि पूंजी की जरूरत सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है?
3: इसमें मैं जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, मैं आपको बता दूं कि इसमें तीन कैटेगरी होता है
0: जी।
3: एक होता है शिशु, एक होता है किशोर और एक तरुण। अच्छा, इसके बाद में भी लास्ट ईयर से एक नया तरुण प्लस करके फोर्थ कैटेगरी भी ऐड किया है। जो सबसे छोटा जो है शिशु, जिसको बोलते हैं शिशु, जो कैटेगरी है ये है 1 रुपया से लेके 50,000 रुपया तक का। जो आप जो बता रहे थे, सबसे जो छोटा जो उद्यमी है वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अप टू 50,000 तक का लोन जो है शिशु कैटेगरी के अंदर में ले सकते हैं
0: जी। अब सवाल यह है कि इस योजना का लाभ आखिर कौन कौन लोग उठा सकते हैं और पात्रता की प्रमुख शर्तें क्या हैं?
3: शर्त यही है कि अच्छा, इसमें मैं पहले बता दूं आपको कि
0: ये श्रेणियों के बारे में बता,
3: श्रेणी तीन श्रेणी जो आपको बताया, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। शिशु में आपका 50,000 तक का है, किशोर में जो है आपका 50,000 to 5 lakhs तक है और तरुण में 5 lakhs to 10 lakhs है
0: जी।
3: और जो तरुण प्लस जो स्टार्ट हुआ है वो 10 lakh से 20 lakh तक का। इसमें तरुण प्लस में आपका कंडीशन नहीं है कि वो पहले तरुण अवेल किया होना चाहिए, तरुण क्लोज करने के बाद ही तरुण प्लस के लिए एलिजिबल। अदरवाइज जो बाकी जो तीन स्कीम है, कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको 5 lakh rupees का लोन चाहिए तो वो जो है डायरेक्टली आपका किशोर में चला जाएगा।
0: बड़े पैमाने पर अगर कोई शुरू करना चाहता
3: है, अगर कोई 10,000 rupees का भी लोन लेते तो डायरेक्टली तरुण में चला जाएगा।
0: अच्छा,
3: लेकिन तरुण प्लस में जाना है तो पहले तरुण अवेल किया होना जरूरी है। अब आपका जो सवाल था कि
0: प्रमुख शर्तें क्या है?
3: शर्त क्या है? उनका बिग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए
0: पहले से।
3: नहीं, अगर आप नया भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका अपना एक प्रोजेक्ट होना

0: अब तो जो आपका शिशु के अंदर में प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है मैम, सिर्फ जो है सेल्फ डिक्लेरेशन दे देने से बस है कि मैं ये छोटा बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके उसको बैंक, जो भी बैंक हमारा जितने भी बैंक्स हैं वो सब ये लोन प्रोवाइड करते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, जितने भी बैंक है। तो बैंक अब उनका जो भी जिसको भी लोन अवेल करना है उनका कंडीशन ये रहता है कि अपना जो जहाँ पे उनका बैंक अकाउंट है वो बैंक में अप्रोच करें, बैंक में अप्रोच करने के बाद में अपना जो प्रपोजल है वो उनको सबमिट करना है बैंक में,
1: जी
0: तो बैंक उनका प्रपोजल एनालिसिस करता है, उसके बाद में उनको लोन देता है। और ये लोन में कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रहता है,
1: जी
0: मतलब विदाउट गारंटी जो है ये लोन
1: विदाउट
0: देते हैं
1: गारंटी।
0: ठीक।
1: अभी मैं वही पूछने वाली थी कि इसके लिए आवेदन के लिए कुछ गारंटी देते
0: नहीं
1: हैं
0: नहीं
1: क्या?
0: कोई
1: कोई
0: गारंटी, कोई
1: गारंटी नहीं।
0: गारंटी नहीं। इसमें आपका जो एसेट बैंक के लोन से जो क्रिएट होते हैं,
1: जी
0: हम जो बैंकिंग टर्म्स में जो बोलते हैं, अभी सपोज कीजिए कोई एक व्यापारी 5 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई किए
1: जी
0: और अपने बैंक में अप्रोच किया, उसका लोन सेंक्शन हो गया, तो उसको सेंक्शन होने के जब डिसबर्स करते हैं उससे पहले उसको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं। उसका सिक्योरिटी क्या होगा, वो जो लोन 5 लाख रुपए का जो लोन से वो जो एसेट क्रिएट किया है वो बैंक के आगे बैंक में मॉर्गेज होगा,
1: ओके ओके
0: उनका जो स्टॉक
1: जी
0: होगा, जो भी
1: जी
0: उसका जो फिक्स्ड एसेट होगा वो बैंक में होगा, अदरवाइज बाहर से उनको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: इसके लिए दस्तावेज, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, क्या शो करना पड़ता है?
0: अप टू 50,000 का लोन के लिए मैम सिर्फ एक सिंपल डिक्लेरेशन चाहिए,
1: डिक्लेरेशन कहाँ से?
0: ये खुद
1: खुद का
0: खुद कि
1: सेल्फ
0: वो कि
1: डिक्लेरेशन
0: क्या क्या
1: चाहिए।
0: बिजनेस करना
1: जी
0: चाहते हैं,
1: जी
0: और उसका जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड
1: जी
0: दे देने से हो जाता है मैम। और जो बड़े जो हैं अप टू जो आपका किशोर और तरुण में उनको अपना प्रॉपर बैलेंस शीट बना के देना पड़ता है बैंक
1: जी द्वीप समूह की बात करें तो हमारे द्वीपों में बड़ी संख्या में लोग छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार से जुड़े हैं। ऐसे क्षेत्र के लोगों को मुद्रा योजना किस तरह मददगार साबित हो गई?
0: अप टू 10 लाख का जो भी लोन होगा मैडम तो छोटा में ही आएगा।
1: जी
0: हमारा जो मुद्रा स्कीम जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था ये छोटे लोगों के लिए ही है। तो अभी हमारे यूटी का अगर हम लोग बात करें मैम, तो लास्ट ईयर जो हमारा 25-26 में टोटल हम लोगों ने मुद्रा लोन 3,272 लोगों को 1 साल के अंदर में लोन
1: दिया
0: दिया था।
1: है
0: इसमें कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बताएं तो शिशु जो है सबसे छोटा
1: जी
0: 232 ही है,
1: अच्छा
0: 232, और किशोर के अंदर में 1,806 लोगों को लोन दिया है, और जो तरुण जो 10 लाख वाला है
1: जी
0: 1,212 लोगों को लोन दिए हैं। तो
1: अच्छा
0: हमारा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि एवरी ईयर में 200 से 300 लोग जो है वो शिशु के अंदर में आता है, बाकी मैक्सिमम आपका किशोर और तरुण में जाता है।
1: अच्छा आपने जागरूकता और लाभ पहुंचाने के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है इस मुद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए?
0: जितना भी बैंक्स हैं मैम, बैंक्स का एक है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप करना कंपलसरी है,
1: जी
0: और उसके लिए आरबीआई के द्वारा मैंडेटरली जितना भी हमारा जो रूरल ब्रांचेस हैं
1: जी
0: स्टेट बैंक को, कोई भी बैंक हो जिसके जो रूरल ब्रांच है, उसको हर मंथ में एक कैंप फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप करना जरूरी है। तो जब भी हम लोग कैंप करते हैं तो जितना भी स्कीम्स हैं, हर एक स्पेसिफिकली मुद्रा नहीं, जो भी स्कीम है हर स्कीम को कवर करके हम लोग कैंप करते हैं। इसके साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग में जो आरबीआई का मैंडेटरी किया हुआ है, एक फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसिलर होता है,
1: जी
0: उसको जो है हर मंथ में मिनिमम 7 कैंप करना होता है। तो ये हमारे यूटी में 12 कैंप से सेंटर्स हैं, वो लोग भी कैंप करते हैं। साथ में और एक सेंट्रल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी करके एक एनजीओ को बैंक अपॉइंट किया हुआ है अवेयरनेस करने के लिए।
1: अच्छा
0: तो एक साल में देखे तो अराउंड 300 अराउंड 300 to 350 कैंप्स जो
1: कैंप्स
0: है
1: आप चला रहे हैं?
0: बैंक्स करते हैं जो
1: अच्छा
0: फाइनेंशियल लिटरेसी के, और इसमें अराउंड 20,000 तक लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा जो एवरेज हम आपको बता रहे हैं अभी।
1: क्या इस योजना का लाभ दूर दराज के द्वीपों के लोग भी उठा रहे हैं?
0: हाँ मैम, ये जहाँ भी बैंक है आपका, अगर हम हमारे यूटी के बात
1: आप
0: करें,
1: पूरे इंटर आइलैंड में इसका?
0: हाँ
1: जी
0: फ्रॉम कैंपेल बे टू डिगलीपोल।
1: अच्छा
0: अब मैं अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आपको डाटा चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, हमारा जो निकोबार में
1: जी
0: ये जो लास्ट ईयर में 72 लोगों ने स्कीम का फ़ायदा उठाया है, और नॉर्थ एंड मिडिल में 914

0: लोगों ने किया है, और साउथ अंडमान टू 2,200 लोग जो है साउथ अंडमान में इसका फायदा उठाए।
1: जी, हमारे द्वीपों में पर्यटन, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प जैसे सेवा से लोग जुड़े हुए हैं, क्या इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी मुद्रा योजना के तहत ऋण की सुविधा उपलब्ध
0: हाँ
1: है?
0: जी, इसमें देखिए स्कीम जो बिजनेस, इसमें सिर्फ बिजनेस नहीं, आपका जो एमएसएमई में जो आते हैं,
1: एमएसएमई, जी
0: एमएसएमई जो आता है वो पूरा सब इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ एलाइड जो आपका एग्री अलाइड एक्टिविटी है,
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: कोई
1: जी जी
0: पोल्ट्री करना चाहता है वो भी मुद्रा में आएगा, कोई गोटरी
1: अच्छा
0: करना चाहता है वो भी
1: हाँ,
0: इसमें आएगा।
1: तो
0: फिर
1: इसमें ऐसा है कि ये महिलाओं के लिए है या
0: ऐसा ऐसा
1: ऐसा कुछ
0: स्पेसिफिक
1: भी
0: नहीं,
1: नहीं
0: में
1: है?
0: कोई भी अवेल
1: कोई भी अवेल कर
0: सेल्फ
1: सकता?
0: हेल्प ग्रुप भी अगर अपना लेना चाहते हैं तो वो भी, वो लोग भी इसमें अवेल कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी
1: अच्छा,
0: ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी ले सकते हैं, कंपनीज भी ले सकते
1: और
0: हैं
1: बिना सिक्योरिटी
0: बिना
1: के।
0: से।
1: कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे और उन्हें किन बातों से सावधान रहना चाहिए?
0: मैम सबसे पहले आप जो भी कोई भी स्कीम हो, सिर्फ मुद्रा ही नहीं, कोई भी स्कीम हो, जिस जो भी अगर आप अवेल करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में
1: बारे
0: पूरा
1: में
0: जानकारी
1: जानकारी
0: लेना
1: होना,
0: जरूरी है, क्योंकि आज का जो टाइम है आपका फ्रॉड जो है डिजिटल फ्रॉड बहुत बढ़ गया है।
1: जी
0: अभी सपोज कीजिए आजकल डाटाबेस इतना फैल गया है, डाटा इतना शेयरिंग होता है, अगर कोई भी हमारा फोन के थ्रू वो, अगर अभी हम लोग मुद्रा के बारे में बात करें, अगर कोई व्यापारी अगर अपने साथ वाले किसी के साथ में अगर लोन के बारे में डिस्कस करता है, ये डाटा अगर शेयर हो गया तो इमिडिएटली जो फ्रॉडस्टर्स जो रहते हैं वो लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। तो एक तो आपका देखिए आपका वो जो प्रिफेस है, आप लोन के बारे में सोच रहे हैं लेना है, इन द मीन टाइम सेम टाइम में अगर आपको कॉल आता है कि मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ या कोई भी बैंक से बोल रहा हूँ, आपको मुद्रा लोन का, हम लोग अभी आज डिस्कस कर रहे हैं मुद्रा के बारे में,
1: जी
0: लेकिन तब भी मैं आपको, मैं श्रोताओं को ही बताना चाहता हूँ कि आज का जो टाइम है डिजिटल फ्रॉड जो है, साइबर फ्रॉड जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप अपना कोई भी जानकारी ओवर फोन किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। अगर आपको बैंक से कुछ काम है तो बैंक वाला अगर फ़ोन भी करता है आपको, आप उसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन आपका
1: अपना
0: कुछ
1: शेयर
0: भी
1: नहीं
0: शेयर
1: करना।
0: मत करिए। आपको शेयर करना है तो आप उनको बता दीजिए कि मैं अपने ब्रांच में जाके कांटेक्ट कर लूँगा, ब्रांच में पर्सनली जाके करिएगा। और बैंक से कभी भी कोई भी डाटा जो है आपका आईडी पासवर्ड हो कुछ भी कभी फ़ोन में नहीं मांगा जाता है।
1: अच्छा जी,
0: लोगों को डराया जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, लोग डर जाते हैं। हम लोग एक्चुअली अब देखिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना मैम, आजकल अभी हम लोग जो परमिशन फ़ोन को दे रहे हैं, अब अभी जो बातचीत कर रहे हैं वो कोई तीसरा आदमी भी सुन सकता है,
1: जी
0: तो आपसे आपको जब वो लोग ट्रैप में लाना चाहते हैं तो जब फ़ोन करेंगे आपको तो वही प्रिफेस में वो लोग बात करेंगे आपसे कि हम लोग जो डिस्कशन
1: जैसे
0: किए हैं अभी
1: प्रोफेशनल है।
0: प्रोफेशनल है
1: जी
0: कि आपने उनसे बात
1: हाँ
0: किया था
1: हाँ
0: इसके बारे में,
1: जी
0: तो उसी के तहत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये करके फ्रॉडस्टर आते हैं। और हम लोग बैंक में बैठते हैं लगभग हर दिन कम से कम 3-4 केस तो हम लोग सुनते हैं मैम कि फ्रॉड हो गया है। तो इसीलिए मेरा श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि अपना कोई भी डिटेल कभी भी किसी के साथ में शेयर मत करिए। आपका अगर क्रेडिट लोन चाहिए तो आप आपका बैंक से कांटेक्ट करिए,
1: पर्सनली
0: और जब भी आप अगर ऑनलाइन भी कुछ भी करते हैं तो पूरा सिक्योरिटी फीचर एक बार चेक कर लीजिए कि ये वेबसाइट सही है या नहीं, और कोई भी लिंक जो भी आता है उसमें टच मत करिए,
1: जी
0: उसको क्लिक मत करिए, वो हम लोग खुद आता है, हम लोग जब क्लिक करते हैं वो डायरेक्टली वो आपको साइट, आपका इंटरनेट बैंकिंग का साइट का पूरा वैसा पेज दिखाई देता है।
1: जी जी
0: तो मेरा रिक्वेस्ट है लोगों से, हमारे जो श्रोताओं से, कि आपका जो पैसा है वो आपका है, उसको अगर कोई भी फ्रॉडस्टर आपसे लेना चाहता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप, और ओटीपी शेयर करना,
1: जी
0: ओटीपी शेयर करना वो मत करेगा, ओटीपी शेयर देखिए पहले जब हम लोग बैंकिंग, हमारा जो पैसा होता है, हम लोग हमारा सेविंग्स हम लोग बैंक में रखते थे, अगर उसको विड्रॉ करना था तो हम लोग जाते थे बैंक में, जब हमारे पास में डिजिटल नहीं था हम लोग बैंक में जाते थे तो क्या एक विड्रॉल फॉर्म या फिर चेक साइन करता था,
1: जी
0: तो हमारा जो अकाउंट का जो छवि था वो मेरा सिग्नेचर था, तो सिग्नेचर बैंक वाले वेरीफाई करते थे, उसके बाद आपको पैसा देता था। अब जो है हम लोग आगे बढ़ गए हैं, एटीएम

0: ये एटीएम में पिन दे दिया है, पिन हमारा चाबी है और इंटरनेट बैंकिंग है तो आईडी पासवर्ड है,
1: जी
0: तो अगर मैं मेरा अकाउंट का ताला तो है, चाबी अगर मैं किसी को शेयर कर दिया तो उसमें बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल
1: नहीं होगा।
0: तो इसीलिए हम लोग को
1: सतर्क रहना है।
0: सतर्क रहना है। और बहुत सारे ऐड भी आरबीआई भी देता है भी आप लोगों को सतर्क रहने के बारे में, कभी भी अपना कोई भी वो बैंकिंग रिलेटेड हो कोई भी अपना पर्सनल डिटेल किसी के साथ में ओवर फोन में शेयर नहीं करना।
1: अंत में हमारे वे श्रोता जो अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे हैं लेकिन पूंजी की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुद्रा योजना को लेकर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैम ये जो स्कीम जो स्टार्ट हुआ था यही पर्पस के लिए हुआ था मैम, जो जो हमारे जो एमएसएमईज है, जो छोटे उद्यमी हैं जिनको अपना बिजनेस करना है। देखिए अभी गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है, आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए आप या तो रोज़गार मिलना है
1: जी,
0: एम्प्लॉयमेंट का हमारे यहाँ पे बहुत कमी है, हमारे यानी पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करने के लिए
1: जी
0: जो आत्मनिर्भर बन जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम जो स्टार्ट हुआ है, जो भी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके पास में अगर ठोस एक उसके पास में एक आइडिया है करना चाहते हैं अगर वो फिजिबल है तो बैंक उसको सपोर्ट करेगा। उनका मेरा रिक्वेस्ट है अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपने जो भी बैंक है उसमें जाइए, वो आप वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उनको अपना आइडिया बताइए, उसके बाद में वो जो है पॉजिटिव होगा तो उसमें से ऑटोमेटिकली लोन तो हमारा पास एग्जांपल हम लोग एवरी ईयर में 3,500 का हम लोग जो है सारे बैंक मिलके हम लोग लोन देते हैं। और इसमें और एक बता दूं, अगर हमारा जो यूटी में मैम यूटी में बैंक जो है टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 8 प्राइवेट बैंक हैं, 1 कोऑपरेटिव बैंक है, ये सब स्कीम्स के अंदर में आता है। हमारा हर स्टेट में एक बैंकर्स के लिए कमेटी होता है जो SLBC जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार में स्टेट बैंक है तो उसको मैं यहाँ पे हेड करता हूँ। अगर किसी को भी कोई भी बैंक से ये स्कीम्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है वो लोग डायरेक्टली हम लोग को अप्रोच कर सकते हैं मैम।
1: कुछ ऐसा संपर्क नंबर कुछ है?
0: संपर्क हमारा ईमेल आईडी है मैम, ईमेल SBI का हमारा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी शेयर कर देने से हम लोग एक्सेस करते हैं। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-3454545, उसमें भी कॉन्टैक्ट करके
1: कर
0: लोग कंप्लेंट का अगर किसी को कुछ इश्यू हो रहा
1: है या कुछ कंफ्यूजन है तो कर
0: अगर
1: सकते हैं।
0: एक्चुअली हमारा रोल ही है कि मैम हम उनको जो बोरोवर है जो कस्टमर है उसको और बैंक के साथ में लिंक करके देते हैं, अगर कहीं पे कुछ फ्रिक्शन है कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको शॉर्ट आउट करके दे सकते हैं।
1: जी आज की बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि छोटे कारोबार और स्वरोजगार को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस तरह वित्तीय सहायता का माध्यम बन सकती है। जरूरत है कि पात्र लाभार्थी योजना की सही जानकारी प्राप्त करें, अपनी पात्रता समझें और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से इसका लाभ उठाएं। हमारे साथ समय देने के लिए, मुद्रा योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए उमर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: इसी उम्मीद के साथ कि आपका हुनर, आपका प्रयास और आपका कारोबार नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गाने।

पहले सुनते हैं जुदाई फिल्म का एक गीत। आवाज़ें हैं हरिहरन, जसपिंदर नरूला और अलका याग्निक की। बोल समीर के हैं, नदीम।

0: श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गाने सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं।
1: सभी बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को बताया जाता है कि कल 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक ज़रूरी बिजली के काम के कारण बिजली सप्लाई बंद रह सकती है। इस दौरान पैंथर 1 और पैंथर 2 लाइन बंद रहेगी और दूसरी लाइनों से बिजली सप्लाई देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी खराबी या किसी दूसरी ज़रूरी वजह से श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो सकती है।

श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

श्रोताओं, और अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारण होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से। 6:10 पर सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम कल सवेरे 6:15 पर, जो केंद्रित होगा माँ बाप शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 7:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा देश रागनी। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में पर्यावरण कार्यक्रम के तहत श्रीमती मोनी दीपा चौधरी की वार्ता सुनिए, पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर श्रीमती वी उमा देवी की विशेष भेंट वार्ता सुनिए, वरिष्ठ नागरिक सम्मान सुरक्षा और स्वाभिमान।

0: कल सुबह 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए, SMS माई चॉइस। दिन के 11 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत दिन के 11:30 पर। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में यानी 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आज आकाशवाणी श्री विजयपुरम में एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व अनुवाद दिवस पर जेएनआरएम कॉलेज में भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अनुवाद की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर प्रशासन ने सभी से विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की और पोषण माह के तहत हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी विषय पर ग्राम पंचायत डिगलीपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आज आकाशवाणी श्री विजयपुरम में एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने हिंदी गीतों की प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर उप महानिदेशक सी सुब्बाराव तथा सहायक निदेशक दीपक चंद्र तिवारी सहित आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक गण के रूप में सहायक निदेशक कार्यक्रम सनम डॉक्टर नवाज और राजेश कुमार निराश उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा उप महानिदेशक सी सुब्बाराव ने की। एकल गायन प्रतियोगिता में अर्शुल रहमान ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन श्री विजयपुरम में राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री राजेश कुमार निराश ने कार्यक्रम को काफी उत्साहपूर्ण और मनोरंजक बताया।
1: हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हम लोग हिंदी की सेवा करने वाले हैं, हिंदी के सेवक हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा अवसर रहा। और दूसरी बात, मैं देखिए हिंदी का प्रचार प्रसार सरकारी तौर पे और अन्य तौर पे तो होता रहता है, लेकिन कहते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा फिल्म के द्वारा किया जाता है और फिल्मों में भी गाने के द्वारा किया जाता है। मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा। ये जो कार्यक्रम हुआ, ये हमारे अपने मन का कार्यक्रम लगा। लोग जिन्होंने गाया मन से गाया, हमारे लिए ये बड़ा संतोष की बात है। इन्होंने बड़े अपनेपन से इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के तमिल विभाग की ओर से आज व्याख्यान कक्ष में विश्व अनुवाद दिवस 2026 मनाया गया। विभाग अध्यक्ष डॉ आर पी पलनीसामी ने स्वागत भाषण में भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अनुवाद की भूमिका पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ पर्ल देवदास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए तमिल भाषा के सहायक प्राध्यापक डॉ तमिल भरतन टी के द्वारा लिखित ई पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने भारतीय साहित्यिक परंपराओं और वैश्विक बौद्धिक संवाद के बीच अनुवाद को सेतु बनाते हुए भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार की पहलों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में तमिल हिंदी अनुवाद, भाषाई प्रामाणिकता तथा तेलुगु अनुवाद और भारतीय भाषाओं के बीच भाषाई संबंधों पर वक्ताओं ने विचार रखे। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग की ओर से स्वच्छता में स्वच्छ भारत विकसित भारत पहल के तहत आज व्याख्यान कक्ष में कागज का उपयोग कम करने और डिजिटल दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ पर्ल देवदास ने डिजिटल दस्तावेजीकरण अपनाने और अनावश्यक कागज का इस्तेमाल कम करने पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है गांधी जयंती और जागरूकता कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को देशभर के साथ श्री विजयपुरम में भी गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दिन उपराज्यपाल गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों, संस्थानों, स्वायत्त निकायों, निगमों, पंचायत प्रधानों, स्वैच्छिक संगठनों और ग्रामीणों से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान के माध्यम से सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की है। प्रशासन ने नागरिकों से 2 अक्टूबर पर पशुवध, पक्षियों की हत्या, मछली पकड़ने और शराब के सेवन ना करने की भी अपील की है। 2 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया गया है। पोषण माह के तहत

0: हरी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी विषय पर ग्राम पंचायत डिगलीपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ICDS परियोजना ग्रामीण डिगलीपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संतुलित पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल देखभाल तथा आंगनवाड़ी सेवाओं के महत्व पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह, लाभार्थियों एवं स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई तथा प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। विद्युत विभाग के अनुसार आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते कल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के कुछ क्षेत्रों पर बिजली बाधित रहेगी। इस दौरान विद्युत लाइनों का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते वैकल्पिक लाइनों से बिजली आपूर्ति बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। वहीं 3 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कालीकट से बर्ड लाइन जंक्शन, मक्कापाड़, न्यू बिम्बलीटान और टेलराबाद क्षेत्रों में नियमित रखरखाव के कारण बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ एवं डिब्रेट कर्मचारी संघ और एनकोफिड ने सेवानिवृत्त निदेशक एरलांडी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वे 92 वर्ष के थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गारचरमा में 2 दिवसीय तंत्रिका रोग विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आज संपन्न हो गया। शिविर में सेवानिवृत्त सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर डॉ. भारत राजकुमार ने मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गारचरमा की टीम के सहयोग से आयोजित इस शिविर में लोगों को उनके समुदाय के निकट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। शिविर में 40 से अधिक लोगों ने विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठाया। डिगलीपुर में कल PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष ग्राम में उत्तर एवं मध्य अंडमान चेस एसोसिएशन ने स्वच्छता अभियान आयोजित किया। इस दौरान विद्यार्थियों, स्थानीय समुदाय के सदस्यों और शतरंज प्रेमियों ने पहले स्वच्छता अभियान चलाया और उसके बाद शतरंज खेल में भी भाग लिया। सुभाष ग्राम पंचायत के प्रधान PR सिंगाराम ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें पदक प्रदान किए। कार्यक्रम में चलने से पहले सोचे और कूड़ा फैलाने से पहले भी सोचे का संदेश दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आज आकाशवाणी श्री विजयपुरम में एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व अनुवाद दिवस पर JNRM कॉलेज में भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अनुवाद की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। महात्मा गांधी की 197वीं जयंती के अवसर पर प्रशासन ने सभी से विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। और पोषण माह के तहत हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी विषय पर ग्राम पंचायत डिगलीपुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये था मौसम का हाल। आइए अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा कल 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और ये जलयान कल ही रात्रि 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर

सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान अगले दिन 2 अक्टूबर को शाम 4 बजे कार निकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 1 अक्टूबर को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी, शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से अपनी यात्रा आरंभ करेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बम्बुका, स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा और इस जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज, कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा, दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा और 2:00

एमवी बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से जाएगा और इस जलयान की वापसी कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा, दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप के लिए चलेगा और 2:30 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर अपनी यात्रा आरंभ करेगा और शाम 4:30 पर यह जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी वंडूर स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा तथा यह जलयान अगले दिन 2 अक्टूबर को प्रातः 5:30 पर स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

सभी बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को बताया जाता है कि कल 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक ज़रूरी बिजली के काम के कारण बिजली सप्लाई बंद रह सकती है। इस दौरान पैंथर 1 और पैंथर 2 लाइन बंद रहेगी और दूसरी लाइनों से बिजली सप्लाई देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी खराबी या किसी दूसरी ज़रूरी वजह से श्रीविजयपुरम और दक्षिण अंडमान के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो सकती है।

एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म अमानत से। आवाज़ें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और पूर्णिमा को फिल्म बोल राधा बोल में। शब्द समीर के हैं, आनंद मिलिंद ने धुन बनाई है।

अभी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बुधवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

और आज की कहानी का शीर्षक है छूटा साथ। दोस्तों, कभी कभी जीवन में प्यार हमारे पास ही होता है, पर हम उसे कभी समझ नहीं पाते हैं। अपने प्यार करने वाले की भावनाओं को या तो अनदेखा कर देते हैं या फिर उनके प्यार से हमेशा अनजान रहते हैं। लेकिन जब वो प्यार करने वाला हमसे दूर हो जाता है, तब हमें उसकी कमी खलने लगती है। तब हम उनके प्यार को जानते हैं, समझते हैं और फिर खुद को कोसते हैं।

ऐसा ही कुछ हुआ गुमनाम नगर के कॉलेज में पढ़ने वाले शौर्य के साथ। शौर्य बहुत खुश मिजाज, मेहनती और सबका चहेता था। शौर्य पढ़ाई के साथ साथ खेल और कला में भी निपुण था और दिखने में उतना ही आकर्षक भी। इतना कि उसके कॉलेज की सभी सुंदर लड़कियां उस पर मरती थी, यहाँ तक कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी भी। लेकिन साक्षी शौर्य की सुंदरता से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से प्यार करती थी। शौर्य जिसकी कॉलेज में इतनी लड़कियां दीवानी थी, उसे साक्षी का प्यार कहाँ ही नजर आता। लेकिन साक्षी तो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। अब साक्षी को हर तरफ और हर जगह बस शौर्य ही नजर आता है।

दोस्तों भले ही शौर्य साक्षी का प्यार नहीं देख पा रहा था, परंतु वह साक्षी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था। वह अपने दिन भर का हाल साक्षी को बताता था, हर राज हर गम साक्षी के साथ साझा करता था, और साक्षी भी उसके लिए एक सहारा बनती जो उसे दुनिया भर की हर फिक्र से बहुत दूर ले जाती। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब शौर्य खुद साक्षी से दूर हो जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद शौर्य काम के सिलसिले से दूसरे शहर चला जाता है, और दिन भर की व्यस्तता के बीच वह साक्षी को भूल जाता है। यहाँ साक्षी सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो जाती है, लेकिन हर पल शौर्य को याद करती है और उसके आने का इंतजार करती है। साक्षी के जीवन का हर लम्हा शौर्य के बिना अधूरा है, और अब साक्षी को बस शौर्य से मिलने का ही इंतजार।

दोस्तों, शौर्य का इंतजार करते करते और सामाजिक कार्य के द्वारा लोगों की मदद करते करते साक्षी को एक गंभीर बीमारी हो जाती है। साक्षी को इस बात का पता लग जाता है कि अब शायद उसके पास ज्यादा समय नहीं है और वह अपने आखिरी पलों में बस एक बार शौर्य को देखना चाहती है। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। उस दौरान शौर्य विदेश गया होता है और उससे किसी का भी संपर्क नहीं हो पाता। यहाँ साक्षी की शौर्य की एक झलक देखने की आस में सांसों की डोरी टूट जाती है। शौर्य को विदेश में भी कुछ अनहोनी होने का आभास हो जाता है, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता और अपनी उलझन के बीच उसे साक्षी की याद आती है कि कैसे जब उसे किसी भी बात की चिंता होती थी तब वह साक्षी से बात करता था और उसकी परेशानी पल में दूर हो जाती थी। और उसी क्षण उसे यह भी एहसास होता है कि वो हमेशा से ही साक्षी से प्यार करता रहा, लेकिन उसने कभी भी साक्षी पर प्यार जताया ही नहीं। अब उसे साक्षी से मिलने की तीव्र इच्छा होती है और वह अपने शहर वापस आता है। हर गुजरते मोड़ पर बस वह साक्षी के बारे में ही सोच रहा होता है। अपने कॉलेज में बिताए उन सुनहरे दिनों को याद कर वह साक्षी के लिए कई तोहफे लेता है, लेकिन जब वह साक्षी के घर पहुंचता है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब वह जानता है कि साक्षी अब कभी भी उसके साथ नहीं हो सकती, वो टूट जाता है। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसे बार बार ये एहसास होता है कि उसने देरी कर दी। उसका तड़पना तब और बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि

साक्षी उससे कितना प्यार करती थी और अपने आखिरी पलों में उसका इंतजार कर रही थी। शौर्य का मन दुख और गुस्से से भर जाता है, उसके दिल से चैन और सुकून कहीं खो जाते हैं। वो बस एक बार साक्षी को देखना चाहता है, उसे अपने दिल का हाल बताना चाहता है और उसे एक बार अपने सीने से लगाना चाहता है। और यह जानते हुए भी कि वह उसे कभी मिल नहीं सकती, शौर्य का तड़पता और रोता हुआ दिल साक्षी को हर जगह ढूंढता है।

अब शौर्य के दिन और रात दुख और तन्हाई में ही गुजरते हैं। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। उसका दिल यह मानने को भी तैयार नहीं है कि साक्षी अब उसके साथ नहीं है। बड़ी मुश्किल से ही लेकिन शौर्य जिंदगी में संभलता है। भले ही कितनी ही तकलीफ हो, उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। उसे समझ आ जाता है कि साक्षी अब लौट नहीं सकती। तो शौर्य यह फैसला करता है कि वह अब कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि वहीं रहकर साक्षी की तरह ही सामाजिक कार्य में लगा रहेगा और उसके कार्यों को आगे बढ़ाएगा। शौर्य हर पल साक्षी को याद करता है और आज भी उससे ही प्यार करता है। शौर्य हमेशा के लिए ही साक्षी का बन जाता है और कभी भी किसी और से प्यार नहीं करता है। अब बस वह यही कहता है कि वो और किसी का नहीं हो सकता। और जब भी साक्षी का जिक्र कभी होता है तो वो बस यही कहता है।

वादा करते हैं जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त दीपक कुमार सिंह को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं अनारी फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने। आनंद मिलिंद ने धुन बनाई है और इस गीत को लिखा है समीर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर के को फिल्म नूरी में। जानिशार अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है खयाम ने।

चोर मचाए शोर। इस फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को। गीत व संगीत रविंद्र जैन का है।

सभी बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को बताया जाता है कि कल 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक ज़रूरी बिजली के काम के कारण बिजली सप्लाई बंद रह सकती है। इस दौरान पैंथर 1 और पैंथर 2 लाइन बंद रहेगी और दूसरी लाइनों से बिजली सप्लाई देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन किसी खराबी या किसी दूसरी ज़रूरी वजह से श्रीविजयपुरम और दक्षिण अंडमान के कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो सकती है।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के मधुर स्वर में फिल्म लव इन टोक्यो का एक गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुए। चित्रपट संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म ब्रह्मचारी में। शैलेंद्र के शब्द हैं, तर्ज बनाई हैं शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, एक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इसी के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

श्रोताओं, अभी आप समवेत स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे, गौरव गान। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी 8:45 पर समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तेलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव

0: से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते, 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तेलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,529 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे

0: की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
5: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
3: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
6: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।

0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चुनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में 1 विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
0: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 पैसे पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में तलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Center approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oilseeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation.

0: farmers under the Rabi price policy at 90,962 crore rupees. Let us first listen to what Union Minister for Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav said about the cabinet decision on the MSP of Rabi crops.
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था. उस फैसले को इसमें लागू किया गया है. वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी.
0: मिस्टर फुकन, हाउ इम्पोर्टेंट दिस डिसीजन फॉर द फार्म हाउसहोल्ड्स गिवन दैट the growers have already been impacted by the El Nino during the Kharif season, though of course the impact of this weather phenomenon was limited overall during the Kharif season.
2: Anumanji, the issue here is that these are actually minimum support prices for the Rabi season, for the Rabi crops, which are winter crops.
0: Yes.
2: There'll be wheat, there'll be chana, there'll be masoor, rapeseed, mustard oil. Now, you know, sowing will begin shortly, sometime.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
2: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
2: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी, SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत ऊहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
4: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में

0: हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर्याय है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं। तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्र में, ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए, या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है। और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे BLO हो, ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी, मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है, और इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गांव के हिसाब से देखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी। और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है, तो उनके पास BLO जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिवीजन या एनुअल रिवीजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, यह एक एन्यूमरेशन प्रक्रिया है। तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं करें हम कहा। और देखिए, मैं भी दिल्ली का मतदाता हूँ और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 मतदाता और चारों को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया। और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था, लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
2: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
1: जी।
2: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। फिर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में, तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है EVM लाया गया, उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूँ, जब बलराज मधोक उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई, तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए, जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल, विपक्षी दल खासतौर से, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि EVM मशीन आई, तो EVM मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे। बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो

0: इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है, जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस पृष्ठभूमिका में अगर हम बात करें, जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की, और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकेपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है।
1: जी
0: तो कहा गया नहीं, ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने। यदि कभी भी युद्ध भी मेरी पट भी मेरी, तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है, विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
1: बिल्कुल
0: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गरमा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण हैं। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से खिसियानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है, उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्षी दल नहीं आए हैं। यानी
1: बिल्कुल
0: विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है, और समय समय पर सरकारें बदली हैं, और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी
1: जी
0: डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है, और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो। अगर
1: जी
0: मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है, और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है, और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये SIR वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अक्षय जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार BLO को था, जो BLO करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ECI नेट नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बचाऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि BLO नहीं, AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना, ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप ERO AERO को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है, उसका जो दाखिला करने की जो उपाय है, तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो CEO के पास भी नहीं होता है, चीफ
1: जी
2: इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर DG या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण

0: जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया, उनका स्पष्टीकरण दिया है। बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन, उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमेटी वमेटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है। फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला, तो वो अलग बात है। वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया।
1: जी
0: दूसरी बात है कि राजनीति इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो ये एक नेशनल हेरिटेज है। मैं इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस जो कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रबंधन तीनों को एक साथ मिला के देखूंगा। ये देश की धरोहर है, अपना हेरिटेज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसको बनाया और पूरा दुनिया भर इसका आदर है, सम्मान है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बताया गया है। तो मुझे इसे थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ इन दिनों ये सारे जो चीज हुआ प्रकरण, उससे लगता है कि हमारे देश के सारे लोगों का ये दायित्व तो है, मतदाता जो चुनाव प्रबंधन करता है, वो जो रूल कर रहा है एग्जीक्यूटिव साइड में वो लोग सरकार में है, और जो विपक्ष में है उनका, और इलेक्शन कमीशन का खुद, हम सबका एक मिलित दायित्व तो बनता है। ये ऑलमोस्ट एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हेरिटेज को क्यों जाने दें, हम इसको जो भी जो कुछ कर रहा है इसकी चीजों में कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है। जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपैंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं, और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको, मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट दे के आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: करेक्शन होना चाहिए और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए, उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है, और ऐसे भी लेना चाहिए, बात नहीं कि ये उनका दायित्व तो है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका के पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस वो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना, या फिर उनके पूरे एसेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही है और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: देखिये, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने भी लाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। तो मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है। अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट

0: पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहां मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं, लेकिन जब लोग, देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है?
1: बिल्कुल
0: केरला में सरकार बदली, तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें? लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें हैं खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम।
1: जी
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, ना कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़े और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें, और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है,
1: जी
0: क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है, लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई। क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया है और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस, हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोटने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा एसआईआर का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है, फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का एक कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। एसआईआर को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की, और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार।

0: बनता है। तो इलेक्ट्रल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
0: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए, और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए, मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोले, आज ऐसा यार नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था, उसमें भी करना के आवश्यक है, लेकिन थोड़ा ऐसा यार जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्यों, एक बेस फिर से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और एसआईआर में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है अभी, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था, ये एसआईआर का दूसरा डायमेंशन जो है थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा, इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं हम और एसआईआर के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी शायद पिछले ही हफ्ते की थी कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 साल के हो चुके हैं,
0: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, यानी इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं उनको सबको जोड़ना चाहिए, और शायद आपने जैसे कहा उन्होंने इसको अभी कैंपेन मोड पर लेंगे, अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें एसआईआर में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा, लेकिन आप एसआईआर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और एसआईआर के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है, आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार एसआईआर करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है, उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है, पिटीशन देने का लेवल्स ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं तो आप डीओ के पास जा सकते हैं, सीओ के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है, अगर एक जो वैध आदमी जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे, और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए, अगर कोई फील्ड में कोई जगह में इसे स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल देखिए, सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
2: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि

0: नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है। हम लोग के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोग के बीच में कोई भी आकर रहता है चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
2: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
0: नहीं, मैं समझता हूं कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता हैं, जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं हैं, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी SIR प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं। तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर
2: बिल्कुल
0: से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया है, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा।
2: बिल्कुल
0: लेकिन जो
2: बिल्कुल
0: अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है? ये भी तो
2: बिल्कुल
0: चुनाव आयोग की जिम्मेदारी
2: बिल्कुल
0: थी, जिसको करने की पूरी कोशिश की गई
2: बिल्कुल
0: पश्चिम बंगाल में।
2: बिल्कुल अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं
6: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए ₹390, जौ के लिए ₹136। कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की

श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी

0: विकासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान
1: उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का 4th स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
2: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का 3रा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंपेन आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
1: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले काइनन चेनाई के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी। आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
3: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा 3रा गेम्स है। व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द camps and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, bahut zyada effort de rahe hain, bahut zyada training kar rahe hain, to kuch to positive aayega।
1: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया, पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज शॉट लगाया जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए जबकि कोरिया को सिर्फ 3 मिले और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ 4th स्थान पर है एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद। पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य, तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें। क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
2: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए। प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गयी। वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबेक खबीब बुल्लायेव से

0: हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के एक से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
1: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौध ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वाश के सितारों की कहानी।
0: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वाश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया। वीर चोटरानी ने 3-1 से जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
1: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकेंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी है। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा, 6-6 की बराबरी पर। उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए, लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6, 4-6 से, लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों ने पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
0: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गई।
1: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
0: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गईं। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
1: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
2: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेंस टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त छठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार

0: 66 के स्कोर के साथ संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधू 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर हैं। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। चार राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
1: और अब बारी सेपक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
0: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
1: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भांजने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला टीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ पांचवें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ तीसरे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्ति ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रही लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। केनो में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
0: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
1: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
0: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय सिनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। इस स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: मुदिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
3: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर

0: आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
2: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के दो बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबले होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे।

0: एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे। सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग जबकि मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:20 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्में की। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म कच्चे धागे से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गाने सुन रहे थे और अब चलते चलते हम आपको दे दें मौसम की जानकारी। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

This is mic number 1. Time here is 4 hours 39 minutes seconds 31 32 33 34 35 36.

0: cut yourself.
1: This is mic number 2, 4 hours, 44 minutes, seconds, 17.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की नौवीं तिथि यानी 1 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 35 सेकेंड हुए हैं। अपनी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। वक्त है अनमोल विचार का।
1: भारत की परंपरा में हमेशा से कहा गया है, ज्येष्ठ पूज्य कनिष्ठ प्रिय, यानी बड़े सम्माननीय और छोटे स्नेहनीय होते हैं। हमारे घरों में बुजुर्ग सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि अनुभव का खजाना, धैर्य का प्रतीक और संस्कारों के वाहक होते हैं। बुजुर्ग वो छांव हैं जो धूप में भी सुकून देते हैं। उनकी दुआएं वो छत हैं जो अंधियारों में भी बचा लेती हैं। अगर जीवन एक किताब है तो बुजुर्ग उसके सबसे अनमोल पन्ने हैं। आज के समय में जहां तकनीक और आधुनिकता तेजी से आगे बढ़ रही है, वहां यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने बड़ों की सीख और मूल्यों को संजो कर रखें। युवाओं के लिए उनका मार्गदर्शन एक प्रकाश स्तंभ है। हम सभी जानते हैं, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहां खुशहाली भी नहीं टिकती। बुजुर्ग ही परिवार की जड़ है, उनका आशीर्वाद ही जीवन की गढ़ है। आइए आज हम सब संकल्प लें, सिर्फ आज नहीं बल्कि हर दिन हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। उनके आशीर्वाद से ही हमारा वर्तमान सुरक्षित है और भविष्य उज्जवल है।
0: ये था अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वरों में मातृ वंदना।